89.6 Mirchi 1. It's hot.

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: वैसे सच कहूं, आज की सुबह कहीं ना कहीं एक नई रौनक लेकर आई है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. Well, आप सभी को एक बार फिर से एक नए दिन की बहुत सारी मुबारकबाद। वैसे अगर आज के दिन को देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एक खुशी की अलग सी लहर है ना। फाइनली ईद अल अधा की छुट्टियां जो शुरू हो गई हैं, तो सबसे पहले आपको एडवांस में ईद अल अधा की बहुत सारी मुबारकबाद। देखिए, बहुत सारी खास बातें हैं, खास चीज़ें हैं जो इस वक्त कतर में हो रही हैं, जिनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस बार की छुट्टियों को कतर में बिताया जाए तो किस तरह से बिताया जाए। लेकिन अभी फिलहाल एक ही काम करना है, आज के दिन को दिल से जीना है, पूरी खुशी के साथ जीना है, अपने घर वालों के साथ, दोस्त यारों के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताते हुए जीना है। चलिए जी, इसी बात के साथ करते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स की शुरुआत। ये अगला प्यारा सा गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
2: मिर्ची फ्रेश माल।
3: रोमांटिक फील्स और सोलफुल मेलोडी के लिए सुनो खासियत।

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जनिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Milci, burka.
2: हेलो।
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
2: हाँ।
3: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
4: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
4: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रूपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
4: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
4: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर
5: इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
2: पिटोगे,
5: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: अरे सूरज चाचू, हम सब तो छुट्टियां मना ही रहे, आप भी जरा छुट्टियां मना के आ ही जाएं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो भाई साहब, अगर कोई मौसम है तो वो है छुट्टियों का मौसम, ईद अल अधा की खूबसूरत छुट्टियों का मौसम। एंड बस इसके चलते कहीं कुछ हो रहा है तो वो है हर घर में जश्न, साथ ही कतर के कोने कोने में ये माहौल जो है हम जरूर फील कर सकते हैं। तो भैया, जब हम सब कोई इतने व्यस्त हैं इस अच्छे से मौसम को जीने में, यानी ये छुट्टियों को अच्छी तरह से बिताने में, तो मेरा इतना ही कहना है कि सूरज चाचू, आपको एक्स्ट्रा काम करने का क्या ही दिल कर रहा है, जरा आप भी छुट्टियां मना के आ ही जाएं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: लेकिन ना, इन्होंने तो मेरी बात ना ठानने का पूरी तरह से मान ही लिया है। जब हमारी छुट्टियां होती है ना, ये जो है काम में जरा ज्यादा लग जाते हैं। जरा देखिए, अभी गर्मी की छुट्टियां आएंगी और ये जो है कितना ज्यादा काम करेंगे। वैसे अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 32। बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गर्मी ग्रेजुअली बढ़ती ही जा रही है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है एंड दिमाग इन कलेजे की ठंडक के लिए एक ही काम करना है, सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन वर्ची। इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future, call now 3100-0813.

0: देखिए क्वीन तो आप हैं ही, जरा इस वक्त ये बात आपको महसूस भी करा दें।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. जब तक रानी को वो रानी की तरह महसूस ना कराओ तब तक बात कैसे बने। अगर जिंदगी की सबसे खूबसूरत रानी की हम बात करें तो वो होती है हमारी माँ। यार हमारी जिंदगी को जिसने पूरी तरह से राजा की तरह बनाया वो हमारी रानी महारानी ना हो तो फिर क्या ही हो। तो चलिए जी, जितनी भी मॉमीज उस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, या आपकी वाइफ एक प्यारी सी मॉमी है, आपकी मम्मी खुद एक बहुत ही प्यारी सी मॉमी है, तो मिर्ची उनके लिए लेकर आया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ना ही वो सिर्फ राइज एंड शाइन कर सकती हैं बल्कि

0: अपने अंदर की उस क्वीन को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5. बिल्कुल, इसकी एंट्रीज जो है अब हम कर रहे हैं एक्सेप्ट. अगर आपको लगता है कि इस पेजेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, उस रेड कार्पेट में आपको वॉक करना है, बहुत सारी खूबसूरत सी यादें अपने लिए संजोनी है, बनानी है, अपने बच्चे के साथ मिलकर एक खास इवेंट का हिस्सा बनना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से एंट्रीज के लिए आपको एक ही काम करना होगा, एक वीडियो बनाना है, 1 मिनट का रील. इट कुड बी एनीथिंग, यू नो, एक फनी वीडियो हो सकता है, कंपाइलेशन ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज हो सकता है, डांस, ड्रामा, पोएट्री, व्हाट एवर यू लाइक. बस ये वीडियो जो है आपके और आपके बच्चे के खूबसूरत बॉन्ड को डिपिक्ट करना चाहिए. और बस हमें भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896. अगर आप सेलेक्ट हुए तो ऑडिशंस पे आपको बुलाया जाएगा, एंड उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हुए तो पेजेंट यानी कि मेन ऑन ग्राउंड इवेंट में आपको ना ही सिर्फ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मेमोरीज बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि इसके अलावा ताज भी आपका इंतजार कर रहा है. फटाफट से एंट्रीज भेजें. मीनवाइल स्टेडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
7: entertainment. Qatar का number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
2: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
1: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood bold eye. Bollywood bold eye.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut cut.
5: Who that?
4: Jassi.
5: Jassi? Kaun si wali Jassi?
4: Jassi who has come, auntie ji?
5: Cut cut. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
1: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी।

0: Mirchi Mommy. 89.6 Mirchi One Mirchi Mommy Award. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल.

0: यार मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जब इन दो चमकते हुए सितारों की मुलाकात होगी तो आखिरकार आलम कितना ही खूबसूरत होगा।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर मुलाकात की बात करें तो हम तो बेसब्र होकर उस नजारे को देखने के लिए तैयार हैं, जहां पर दो सितारे आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे. Well, हम और आसमान के टिमटिमाते हुए तारे, यानी कि सितारे. Well, कटारा कल्चरल विलेज एक बार फिर से हम सबकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट का सॉलिड हब बन चुका है. ईद अल अधा के जश्न की अगर बात करें, 27th ऑफ मई को शुरू होने वाला ये सिलसिला अगर कभी तक चलेगा तो वो है 29th ऑफ मई तक. एंड हर दिन शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ढेर सारी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज, परफॉर्मेंसेस जो है आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी. एंड सबसे खास बात, अगर फायरवर्क्स की हम बात करें तो ठीक रात 8:30 बजे फायरवर्क्स पूरे के पूरे 3 दिन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? भाई हम तो तारे हैं, आसमान के उन सितारों से मिलने की तैयारी कर ही ले. क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. मंदी का नाम अंशु. एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: Milci.
1: Escabana, uscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virtua la burga.
2: Milci, burga.
3: हेलो
4: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख कराए से।
4: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
4: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
4: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
4: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
4: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
4: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
4: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा
4: लो। अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है
3: साहब जी,
4: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
4: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछो भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा था बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
4: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
4: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
4: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ ले,
4: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: अरे बच्चे बूढ़े और जवान, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर मैं कतर को देखने की कोशिश करूँ तो ईद अल अधा का जश्न सेलिब्रेशन कुछ इस तरह से कमाल है कि भाई सब कतर के इतने सारे मैग्निफिशेंट मॉल्स में बेहतरीन एक्टिविटीज के चलते बच्चे बूढ़े और जवान हर कोई खुश जो है वो हो ही जाएगा। हैविंग सेड दैट, अगर आपको लगे कि इंडोर एक्टिविटीज में किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाए तो बस जाइए कतर के मॉल्स जो है जरा घूम के आइए, जहाँ पे बच्चों के लिए ढेर सारी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज हैं, बड़ों के लिए कुछ ऐसे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स हैं कि भैया शॉपिंग का एक्सपीरियंस तो कमाल होगा। एंड घर में जब लेडीज एंड बच्चे ऑक्यूपाइड होते हैं ना तो बाकियों की जिंदगी जो है अपने आप अच्छी हो ही जाती है। बढ़िया है जी, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद अल अधा, आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। इसी बात के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, सीधा, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है.
0: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी. ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का HR, फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी. शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी.

0: औरों के लिए तो बहुत जी लिया, अब जरा खुद के लिए भी जी ले।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में अगर एक ऐसे शख्स की कहानी बताने की कोशिश करूं जिसने हमेशा खुद से पहले औरों के बारे में सोचा, खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने घर वालों के बारे में सोचा, तो वो है हमारी माँ। यार चाहे खुद कितनी भी भूखी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा पेट भर जाए ना तो उन्हें जो है तसल्ली और खुशी मिल ही जाती थी। खुद जो है कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, लेकिन हम जो है अगर सुकून एंड चैन की नींद सो लेना तो उनकी नींद जो है वो हो ही जाती थी। खुद जो है कितनी भी परेशान क्यों ना हो, हम जो है ज़रा सा मुस्कुरा देना तो उनका दिन जो है वो बन ही जाता था। जिस माँ ने इतना कुछ किया, क्यों ना अब हम उसके लिए कुछ कर लें। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेशल इवेंट, दैट इज मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5, जो एक बार फिर से हमारी जिंदगी में आ चुका है। देखिए बात इतनी है, अगर आपको लगता है कि आपकी मॉमी जो है एक सुपर मॉमी है, आप खुद जो है एक सुपर मॉमी है, या आपकी वाइफ एक बड़ी ही प्यारी सी मॉमी है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार। फटाफट से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की बारी आ गई है, इस रेड कार्पेट पर चलने की बारी आ गई है, इस इवेंट में बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाने की बारी हो गई है। एंट्री के लिए एक ही काम करना है, फटाफट से एक मिनट का रील बनाना है आपको अपने बच्चे के साथ, दैट डिपिक्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट यू बोथ शेयर, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000189 6। रील में होना क्या चाहिए, कुछ भी यार, कोई फनी रील बनाए, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, जो आपको पसंद है, एंड बस हमें भेज दें। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए, ऑडिशन पे बुलाया जाएगा, ऑडिशन में अगर सेलेक्ट हुए तो बस पेजेंट का हिस्सा आप जो है अपने बच्चे के साथ जरूर बनेंगे, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 5000189 6, वी आर वेटिंग फॉर योर एंट्रीज। डेडलाइन जो है बस इस थर्सडे तक ही है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
2: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
2: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
3: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
2: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
1: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
4: Only on Mirchi, it's hot.
5: This Eid, the magic comes alive at Abu Sidram Mall. Join Layali Eid at Abu Sidram Mall on 27th, 28th and 29th May from 6 p.m. to 10 p.m. and experience the spectacular Aladdin show, live entertainment, kids activities and much more. Abu Sidram Mall, your Eid destination.
6: Cut.
7: Who that?
6: भट्ट।
7: अरे भट्ट हूँ।
6: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
7: खट खट हू दैट।
8: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
1: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर, फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी।

0: 89.6 मिर्ची वन मिर्ची मॉमी अवार्ड।
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: देखो यार, बस बात इतनी है कि इस वक्त हर जगह बस खुशी की लहर है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station and this is RJ Anshu with you. Well, अगर खुशी की लहर की बात करें तो बस कतर के कोने कोने में इस वक्त ये जरूर महसूस हो रही है। जब फाइनली ये पता हो कि ईद अल अधा का जश्न कतर में शुरू हो गया है तो भाई दिल जो है खुशी से गदगद ना हो तो फिर क्या यू। यार पता है एक बात तो है कि अगर फेस्टिवल्स की बात करें, फेस्टिव ओकेशंस की बात करें तो ऑर्गेनिकली हम जो है ना एक अलग जोन, एक अलग मोड में चले ही जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसे खास ओकेशन अक्सर हमारी जिंदगी में बस आते ही रहने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खुशियों का एक नया रीजन हर बार की तरह एक बार फिर से हमारी जिंदगी में शामिल हो ही जाता है। तो बोले इतना ही कहना चाहूंगी, इस बार की ईद को दिल से मनाएं, बहुत खुशी के साथ मनाएं, दोस्त यारों के साथ, घर वालों के साथ जितना ज्यादा वक्त स्पेंड कर सकते हैं वो करें। एंड इसके अलावा घर पे जो भी अच्छा खाने पीने को मिले उसे खूब एंजॉय करें, हम भी अपने घर पे बना के खाएं। टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑल बंदी का नाम अंशु।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Pepe Mirchi.
1: Escabana, poscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
3: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो
4: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
3: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
4: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
3: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
4: मोबाइल पे
3: और क्या,
4: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
3: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
3: आपको बताना चाहिए था ना
4: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्भे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
3: आप खम्भे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
4: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
3: आपका दिमाग खराब,
4: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
3: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
4: नवेद लिखिए, नवेद
3: आ रही है।
5: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
8: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी।

0: यार मुझे एक बात बताना, क्या कभी घर पे सर्कस लगाया है?
1: मिर्ची अंशु
0: नहीं, क्योंकि क्या है ना, हम जब कजिन्स की पलटन मिलते थे तो घर वालों को तो यही लगता था कि लो सर्कस शुरू हो ही गई। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, इस वक्त अगर अपने बचपन के सर्कस एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश करें तो भैया हमारे लिए तो उसका मतलब काफी सिंपल होता था। लायन, टाइगर, मंकीज एंड वो मोटरसाइकिल वाला मौत का कुआं एंड दो चेहरे वाली नागिन। लेकिन साथ में एक जोकर भी था जो कभी कभी हंसाता था या तो फिर कभी डराता था। और सच कहूं, जब भी हम सारे के सारे दोस्त यार या कजिन्स मिल जाए ना, तो घर वालों को लगता था कि सर्कस जो है वो घर पे ही शुरू हो गया। लेकिन आज के रेट में सर्कस जो है ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड वन सच एक्सपीरियंस इज हैपनिंग इन दोहा एट द मोमेंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फोंटाना बाय सर्क दू लिबान व्हिच इज हैपनिंग एट हयात प्लाजा टिल 31st of May। वाटर इफेक्ट्स, एरियल परफॉर्मेंसेस, लाइट्स, म्यूजिक, एक्रोबैटिक्स, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक विजुअल एक्सपीरियंस के जरिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? शोज आर हैपनिंग वेडनेसडेज फ्रॉम 7 PM टू 9 PM एंड थर्सडेज टू सैटरडेज विद टू टाइमिंग्स 4 PM टू 6 PM एंड 7 PM टू 9 PM। जाइए, एंजॉय करके आइए। एक ही बात कहूंगी, ये जो फोन नामक डब्बा है ना, इसे प्लीज पॉकेट में रखना। अगर पूरा टाइम ऊपर उठाकर उसे स्क्रीन में ही देखना है तो घर में ही देख लेना, ऐसे क्यों जाना। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: अमीर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान सबके गाने आएंगे दीदी।
1: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: देखिए झाड़ू चप्पल बेलन, इसका स्किल तो बहुत दिखा दिया, अब जरा क्वीन की तरह रैंप में वॉक कर अपना अगला स्किल दिखा ही दे।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. सच कहूँ, मम्मी जो होती है ना, ये सर्व गुण संपन्न होती है, जहाँ पर एक तरफ झाड़ू बेलन चप्पल के साथ इसे रौद्र रूप धारण करना आता है, तो वहीं दूसरी तरफ रैंप में क्वीन की तरह वॉक कर वो नजाकत कैसे दिखाना है ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है। बस इसीलिए तो हर एक मॉमी होती है सुपर मॉमी। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मी भी बस सुपर मॉमी है, तो अब मिर्ची मॉमी बनने का वक्त जो है वो आ ही चला है। वेल, मिर्ची मॉमी is back with its biggest and boldest edition. Absolutely, we are talking about edition 5. And अगर आपको लगता है मिर्ची के सबसे खूबसूरत इवेंट का आपको हिस्सा बनना है, तो what are you waiting for? फटाफट से एंट्रीज भेजने की तैयारी आप कर ही ले। आपको भेजना होगा एक वीडियो, 1 minute reel that will basically depict the beautiful bond that you carry with your child. It could be anything, any funny video, compilation of beautiful memories, dance, drama, music, poetry, जो भी आपको पसंद है। आपके और आपके बच्चे का बॉन्ड जो है उस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट होना चाहिए। फिर क्या है, अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको ऑडिशंस के लिए बुलाया जाएगा। एंड ऑडिशंस में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स फाइनली पहुंच जाएंगे ग्रैंड फिनाले में। वो रैंप वॉक होगा, वो रेड कार्पेट होगा, वो खूबसूरत सी मेमोरीज होंगी, बहुत सारे इवेंट्स होंगे। एंड उसके बाद फाइनली एक मॉमी बनेगी, मिर्ची मॉमी यानी कि सुपर मॉमी। एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 5000 1896 एंट्रीज भेजने का लास्ट दिन है थर्सडे। फटाफट से पार्टिसिपेट करें एंड बस मिर्ची के प्लेटफॉर्म में अपने हुनर को दिखाने के लिए तैयार हो जाए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Agarkar.
5: Agarkar who?
4: Agar karna hai to kar, warna chhod de.
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi.
6: It's hot.

0: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
1: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मॉमी।

0: Mirchi Mommy. 89.6 Mirchi One, Mirchi Mommy Award. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट.

0: अच्छा सुनो, बचपन के दिनों में कभी जानबूझकर घूमने की कोशिश की है?
1: मिर्ची अंशु
0: यार, हमने ना ऐसी हरकत की है, बड़ा मजा आता है. वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. यार, इस वक्त अगर अपने बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूं तो सीधा अगर कोई एक्सपीरियंस याद आता है तो वो है नानी का घर. गर्मी का दिन, जहां मामा के बच्चे, मासी के बच्चे, हम सब एक साथ मिलकर क्या खुरापाती हरकतें किया करते थे. हम सब की उम्र जो है ना ऑलमोस्ट सेम, हम उम्र. अब ऐसी टोली जब घर के बड़ों के साथ कहीं बाहर निकल जाए तो कुछ खास प्लानिंग ना हो तो फिर क्या ही हो. एंड हमारा प्लान जो है ना बड़ा कमाल होता था कि भाई हर किसी ने अलग अलग जगह जाके घूम जाना है, स्पेशली अगर हम किसी फेयर में. अब ऐसा क्यों, हम जो है किसी दुकान में जाते थे, जोर जोर से रोने लगते थे कि हमारे मम्मी पापा जो है ना गुम गए. अब दुकान वाले भैया इतने उदार होते थे, ना ही सिर्फ हमें प्यार से बिठाते थे, पानी पिलाते थे, बल्कि अगर कुछ दुकान में अच्छे टॉयज हैं तो हमें फ्री में दिया करते थे. कुछ अच्छा खाने पीने का सामान है वो भी मुफ्त में मिलता था. एंड हाँ, इसके चलते हमारी लॉटरी एंड पार्टी जो है ना वो बस हो ही जाती थी. लेकिन ना यार, कतर के बच्चों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कतर ने इस वक्त लॉन्च किया है किड्स गो कैंपेन, जिसके चलते 12 साल से कम उम्र के बच्चे कतर में हो रहे बहुत सारे एक्टिवेशंस को समर्स के दौरान ना ही सिर्फ मुफ्त में एंजॉय कर पाएंगे, इनफैक्ट अगर डाइनिंग की बात करें, एक्सपीरियंसेस की बात करें तो उनका मजा भी उठा पाएंगे. लेकिन हाँ, माँ बाप को अपनी टिकट खरीदनी होगी. ऐसा नहीं बच्चों के साथ हम भी मुफ्त, थोड़ा तो पैसा खर्च करो, जेब ढीली करो. किड्स गो कैंपेन के सारे डिटेल्स जानने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करते रहिए एंड वो सुनते रहिए कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट बंदी का नाम अंशु. Enjoy.
2: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vidva la murga. Milchi, murga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पा ला रहा हूँ।
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रह रहे हो?
3: मैं कहाँ रह रहा हूँ?
2: सॉरी, आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं।
3: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगला।
5: द होल थिंग इज दैट रुपया सबसे बड़ा है भैया। अब जब एक्सचेंज के रेट्स इतने कमाल हो, तो पैसे को हम सर आंखों पे ना बिठाएं तो किसे ही बैठाएं। हैविंग सेड दैट, आईपी मनी में अच्छे एक्सचेंज रेट्स का बोलबाला है। अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.13, पाकिस्तानी रुपीज 76.89, बांग्लादेशी टाका 33.67, नेपाली रुपीज 41.79, एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 88.27। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
1: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट। कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
5: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। It's hot.

0: यार मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जब इन दो चमकते हुए सितारों की मुलाकात होगी तो आखिरकार आलम कितना ही खूबसूरत होगा।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. And this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर मुलाकात की बात करें तो हम तो बेसब्र होकर उस नज़ारे को देखने के लिए तैयार हैं जहां पर दो सितारे आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। Well, हम और आसमान के टिमटिमाते हुए तारे यानी कि सितारे। Well, कटारा कल्चरल विलेज एक बार फिर से हम सबकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट का सॉलिड हब बन चुका है। ईद अल अधा के जश्न की अगर बात करें, 27th ऑफ मई को शुरू होने वाला ये सिलसिला अगर कभी तक चलेगा तो वो है 29th ऑफ मई तक। एंड हर दिन शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ढेर सारी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज परफॉर्मेंसेस जो है आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। एंड सबसे खास बात, अगर फायरवर्क्स की हम बात करें तो ठीक रात 8:30 बजे फायरवर्क्स पूरे के पूरे 3 दिन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? भाई हम तो तारे हैं, आसमान के उन सितारों से मिलने की तैयारी कर ही ले, क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: उसे झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: अरे अरे, किचन और ऑफिस नहीं बल्कि इस वक्त रेड कार्पेट और क्राउन कर रहा है आपका इंतजार।
2: मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. To all the wonderful mommies who are connected with me at the moment, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि इस वक्त बेल एंड पाटा चकला और फाइल्स नहीं बल्कि क्राउन और रेड कार्पेट आपका इंतजार कर रहे हैं बिकॉज मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 इज बैक एंड इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एंड बोल्डेस्ट एडिशन अंटिल नाउ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से एक मिनट की रील आपको बनानी है अपने बच्चे के साथ और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000 1896। एंड अगर आपसे सेलेक्ट हुए तो आपको मिलेगा मौका कि आप ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बन सकें और इस मैजिकल मोमेंट को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में शामिल कर सकें। सो फटाफट से एंट्रीज भेजिए, थर्सडे के अंदर अंदर ही भेजनी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
3: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
1: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
3: Cut, cut.
4: Who there?
3: Whom are you?
4: Whom are you who?
3: Aray, whom are you looking for, madam?
4: Cut, cut. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
1: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मॉमी।

0: 89.6 Mirchi 1 Mirchi Mommy Award. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10. आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल.

0: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो कोशिश ही नहीं करना चाहती।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पिटी उंडन हो आप, और भाई जिस हिसाब की कॉमेडी फिल्में आ रही है ना इंडस्ट्री की तरफ से, दैट इज मेकिंग मी थिंक कि भाई क्या हो गया है, क्या हम अपने सोच का दायरा बढ़ा नहीं सकते हैं। सो है जवानी तो इश्क होना है, ये एक अपकमिंग फिल्म है जो डेविड धवन की अपेरेंटली लास्ट डायरेक्टोरियल मूवी होने वाली है। हाँ ठीक है, आई अग्री, डेविड धवन का एक सिग्नेचर है कॉमेडी मैडनेस, बट क्या उस चक्कर में हम आज भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इनफिडेलिटी को वैलिडेट करें, ये जरूरी है? आई जेन्युइनली लव ब्रेन रॉट कॉमेडी, आप दीजिए मुझे उस तरीके की स्क्रिप्ट और उस तरीके की कहानी कि मैं पागल हो जाऊं बाय द एंड ऑफ द मूवी। बट सोचने वाली बात तो ये है कि क्या जेन्युइनली लोगों को हंसाने के लिए सिर्फ यही टॉपिक्स रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री के पास? मतलब पूरी फिल्म में हीरो के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, वो 10 तरीके की चीजें कर रहा है, धोखा दे रहा है, फलाना ढिमकाना, और बाय द एंड वो एक मोनोलॉग देगा और सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। यू नो, आज भी 2026 में इस अप्रोच के चेंज ना होने का जिम्मा हमें भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर देखेंगे नहीं ऐसी फिल्में तो हमें परोसी भी नहीं जाएंगी ना ऐसी फिल्में, इफ यू नो व्हाट आई मीन। माइंड यू, ये फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली है एंड आई एम नॉट एट ऑल एक्साइटेड फॉर इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखरा से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
2: पकड़ ले।
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकुड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
6: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मॉमी।

0: भाई अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। माँ बहन का ट्रेलर, भाई ये अपकमिंग फिल्म का नाम है, हाँ जी माँ बहन। आपको क्या लगा कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ, इतनी बेवकूफ लग रही हूँ क्या आपको? एनीवे, ये ओटीटी पे रिलीज होने वाली अपकमिंग फिल्म है जिसमें माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धारणा, हु स्टार्टेड हर करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये लीड रोल्स निभाते नजर आ रही है। द मूवी इज डायरेक्टेड बाय सुरेश त्रिवेणी, जो 4th of June से स्ट्रीम करना शुरू होगी। एंड ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये कॉमेडी ड्रामा लेकर आने वाली है एक टेंस लाफ आउट लाउड कवर अप गेम, जिसमें एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ काफी रोमांचक जिंदगी जीते नजर आ रही है। एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस वन। राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश स्टारर फिल्म रफ्तार की बात कर लेते हैं, जिसको एक नया रिलीज डेट मिल चुका है। हाँ जी, अब ये फिल्म थिएटर्स में अक्टूबर 16 को रिलीज होगी। बाकी आदित्य निम्बलकर डायरेक्टोरियल ये फिल्म इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग एड टेक सेक्टर को टच करने वाली है, विच इज गोइंग टू बी एन इमोशनल ड्रामा विद थीम्स ऑफ एम्बिशन एंड मॉडर्न एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। This is a major cross-industry collaboration जो किया है अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल के लिए विद भोजपुरी एक्टर एंड सिंगर अक्षरा सिंह। हाँ जी, इनका एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है घिस घिस घिस। ऑल्दो बीइंग अ बिहारी, मुझे कुछ खास समझ नहीं आया ये गाना, क्योंकि फिर से इसमें उसी तरीके के म्यूजिक और उसी तरीके के लिरिक्स का इस्तेमाल है जिससे हम बिहारी अपने आप को रिलेट नहीं करना चाहते। बट एज वी ऑल नो, बॉलीवुड और क्लीशे गो हैंड इन हैंड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। Stay tuned, it's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: Romantic feels aur soulful melody ke liye suno khasiyat.

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो अपने डेली ड्रिल की बात कर रही हूँ यार। फाइंडिंग मिर्ची फिल्म ची, हाँ जी, इट्स टाइम। आपको तो पता ही है, आपको इस वक्त मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होता है अपना फोन नंबर ताकि मैं आपको कॉल करूँ और ये गेम आपके साथ खेलूँ। तो आज मेरी बात किससे हो रही है?
3: रिंकू से।
0: रिंकू जी, कैसी हैं आप?
3: बढ़िया हूँ।
0: अरे क्या बात है, गेम खेलिएगा?
3: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल उसी के लिए।
0: ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शाहरुख खान का नाम ओके यानी ओम कपूर किस फिल्म में था?
3: ओम शांति ओम।
0: ग्रेट। ओम शांति ओम में शांति प्रिया को कौन मारता है?
3: अर्जुन रामपाल।
0: अर्जुन रामपाल ने लीड गिटारिस्ट का रोल किस फिल्म में किया है?
3: रॉक ऑन।
0: ओके, रॉक ऑन का कौन सा हीरो भाग मिल्खा भाग में भी है?
3: ये फरहान अख्तर।
0: फरहान अख्तर की फिल्म जिसमें ऋतिक रोशन है?
3: जिंदगी ना मिले दोबारा।
0: ग्रेट। ZNMD में लैला का रोल किसने किया है?
3: कटरीना कैफ।
0: कटरीना किस फिल्म में पॉलिटिशियन बनी है?
3: राजनीति।
0: राजनीति का कौन सा हीरो कटरीना का एक्स भी रह चुका है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर ने कौन सी बायोपिक की है?
3: संजू ही तो है।
0: हाँ, संजू में रणबीर कपूर का बेस्ट फ्रेंड कौन बनता है?
3: दोस्त बनता है वो गुज्जू, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है।
0: चलिए कोई बात नहीं, इतना अच्छा जो अभी तक खेला है आपने उसके मद्देनजर आपको ये टैग तो देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो चलो भाई, आज के एपिसोड में रिंकू जी एक मिर्ची फिल्मची तो बन चुकी हैं हमारी, बाकी इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के DM में जाके अपना नंबर भेजिए। टिल देन एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खटखट,
5: कौन है?
4: दवे।
5: दवे कौन?
4: द वे यू लव मी। आई हाय मर जावा।
5: खटखट, हू दैट?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: लची फिलमची
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। सो इफ यू आर न्यू टू द शो लेट मी टेल यू, मैं रोज ये गेम खेलती हूँ जिसके थ्रू आई फाइंड अ मिर्ची फिल्म जी। बेसिकली देर आर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बॉलीवुड जिनका आंसर अगर आपने सही सही दिया तो ये टैग आपको मिल जाता है। सो आज ये गेम हमने शुरू किया था रिंकू जी के साथ, जो एक पॉइंट पे अटकी, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए अब हमारे साथ है मीनाक्षी जी। क्या आप रेडी है?
2: हाँ जी।
0: ओके, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि फिल्म संजू में रणबीर कपूर का बेस्ट फ्रेंड कौन बनते हैं?
2: विक्की कौशल।
0: विक्की कौशल किस फिल्म में पाकिस्तानी मेजर का रोल प्ले करते हैं?
2: राजी।
0: राजी में सहमत का रोल किसने प्ले किया है?
2: सहमत, ये आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट टीवी एंकर किस फिल्म में बनती हैं?
2: रॉकी और रानी।
0: रॉकी और रानी में जिम फ्रीक कौन है?
2: रणवीर सिंह।
0: रणवीर सिंह ब्रेड पकौड़े की कसम किस फिल्म में खाते हैं?
2: शादी मुबारक।
0: तो आप बोल सही रही हैं, उनका ये कंपनी का नाम होता है भले ही, लेकिन मूवी का नाम कुछ और है।
2: बैंड बाजा बारात।
0: ग्रेट, बैंड बाजा बारात में जिसके साथ व्यापार उसके साथ कभी ना करो प्यार, ये डायलॉग कौन बोलता है?
2: अनुष्का शर्मा।
0: ग्रेट, अनुष्का शर्मा कुश्ती किस फिल्म में करती हैं?
2: सुल्तान।
0: वाओ, सुल्तान में सलमान खान का कोच कौन बना है?
2: रणदीप हुडा। हाँ।
0: रणदीप हुडा आलिया को किस फिल्म में किडनैप करते हैं?
2: रणदीप हुडा हाईवे।
0: क्या बात है, तो इसी के साथ आज हमारी दूसरी मिर्ची फिल्मची बनी है मिस मीनाक्षी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: सो वरी नॉट माई फ्रेंड, अगर आज ये गेम मिस हो गया देन कल एक बार फिर से मौका मिलेगा। यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजना है एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोना बी टेकन केयर बाय मी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: ये गाने सिर्फ गाने नहीं हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, देखो जिंदगी में टाइम एंड अगेन हम किसी न किसी सिचुएशन के थ्रू जा रहे होते हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन इन सारी सिचुएशंस को समझाने के लिए कुछ गाने हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू हमें मिले हैं, जिनको अप्रिशिएट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे उस सिचुएशन के लिए वो गाना कुछ ज्यादा ही एप्ट बैठता है। तो बस आज का पंच की लिस्ट इन्हीं गानों को डेडिकेटेड है, जिसमें सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फिल्म हाईवे से अबाउट द सॉन्ग पटाखा गुड्डी। वेल अबाउट द मूवी, ये 2014 में रिलीज हुई थी, स्टारिंग आलिया भट्ट एंड रणदीप हुडा एज लीड्स, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली। म्यूजिक इस मूवी का है AR रहमान द्वारा और लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, और क्या ही लिख दिया है यार इस गाने में उन्होंने कि मालिक ने जो चिंता दी तो दूर करेगा वो ही। और कसम से ये गाना कितना सेंस बनाता है ना, जब आप फंसे पड़े होते हैं तो आपको लगता है कि यार कोई रास्ता ही नहीं है, बट उस वक्त हमें समझना चाहिए, याद रखना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में ये सिचुएशन आई है देन ऑफ कोर्स वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। बस थोड़ा सा दिमाग शांत करके अपने आप को उस रास्ते पे लेकर जाना है और बस देखना वो रास्ता कब खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। वेल कुछ ऐसे ही चार और गाने डिस्कस करना बाकी है इन माई पांच का पंच लिस्ट, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vida para la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
5: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहे। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
3: जी कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
5: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मीसम नाम है।
5: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
3: 1200 रुपए।
5: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
3: हाँ जी, 1st September 1980।
5: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
3: जी
5: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
3: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
5: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
3: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
5: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
5: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
3: सर
6: इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
3: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
6: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
9: Mummy, छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी manager का काम कितना ज़्यादा complex होता है।
10: जो खुद University of Management हो, वो manager का role नहीं समझेगी। Grow up, son. She's the OG manager of every घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का HR, फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। She's not just a mummy, she's a super mommy.

0: बाबू मोशाय, ये गानी नहीं चलती फिरती समझदारी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। लेकिन आप तो समझदार हैं बाबू मोशाय, इसलिए तो आज का पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे गानों की डिस्कशन कर रही हूँ जो हमारी जिंदगी में समझदारी भरते हैं। हाँ, तो लिस्ट में सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द सॉन्ग पटाखा गुड्डी फ्रॉम द मूवी हाईवे, और अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट कोक स्टूडियो 14 का गाना तू झूम जो आया था इन द ईयर 2022। सिंगर्स हैं आबिदा परवीन एंड नसीबुलाल, लिरिक्स हैं इस गाने के जुल्फिकार जब्बार खान और अदनान धूल के, म्यूजिक दिया है जुल्फी एंड अब्दुल्ला सिद्दीकी ने, और भाई साहब इस गाने का एक एक लाइन आपके दिल में ऐसे जाके लगता है कि क्या ही बताओ, स्पेसिफिकली दिस वन।
3: समझ के की करना है, दिल नो है समझावा, तू झूम।
0: सबको समझ के क्या ही कर लेंगे, अपने दिल को ये चीज समझा लो, इसमें ही समझदारी है बाबू मोशाय। क्योंकि लोगों को जो सोचना है आपके बारे में वो सोचते रहेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लो अपनी इमेज बदलने की, सामने वाले को विश्वास दिलाने की अबाउट थिंग्स दैट यू बिलीव इन, बट ऐसा होगा नहीं। इसलिए बेटर ये है कि दूसरों की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी चलाते रहो। मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट फिल्म तमाशा से सफरनामा गाने के बारे में। भाई भाई, 2015 में आई थी ये मूवी, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली अगेन। म्यूजिक इस मूवी का है एआर रहमान द्वारा, लिरिक्स हैं इरशाद कामिल के, और इस गाने को गाया है लकी अली ने। स्पेसिफिकली दिस लाइन जस्ट टेक्स अवे माय हार्ट।

ऐसा होता है ना कि हम पूरी दुनिया में चैन सुकून ढूंढना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब तक आपका दिल आपका मन शांत नहीं होगा आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। सो ऑल इन ऑल बाबू मोशाय, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसकी शुरुआत अपने अंदर से करो। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ये गाने नहीं आपकी जिंदगी के सल्यूशन है बाबू मोशाय।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: तो हमारी जिंदगी में कई सिचुएशंस होती हैं और हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाना बिल्कुल एप्ट बैठता है। तो अगर आपकी जिंदगी में फिलहाल नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं तो बाबू मोशाय आज का पांच का पंच की लिस्ट बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आई एम डिस्कसिंग अबाउट सच हिंदी सॉन्ग्स जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें समझ देते हैं। इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट पटाखा गुड्डी गाना फ्रॉम द मूवी हाईवे। नंबर दो पे हमने तू झूम की बात की फ्रॉम कोक स्टूडियो 14। नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट तमाशा से सफरनामा सॉन्ग के बारे में। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट फिल्म पीकू से जर्नी सॉन्ग के बारे में बाबू मोशाय। वेल, ये मूवी डायरेक्ट की सुजीत सरकार ने जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, जिसमें अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पाडुकोन लीड रोल्स में थे। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक, अनुपम रॉय का अल्टीमेट म्यूजिक है, लिरिक्स भी उनके ही है अलॉन्ग विद मनोज यादव। और अगर जर्नी सॉन्ग की पर्टिकुलरली बात करें तो आवाज है अनुपम रॉय, श्रेया घोषाल, अनुज गुरवारा और एस जानकी की। एंड भाई, इस गाने का ये वाला लाइन जो है ना,
3: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिश अनजान है अब क्या करें,
0: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे। भाई, यही तो फलसफा होना चाहिए ना हर इंसान की जिंदगी का, कि जितना भी वक्त है उसको इस तरीके से जियो मानो वो आखिरी पल हो आपका, और अगर दर्द है तो उस पे मरहम करो वरना नासूर बनते उसको देर नहीं लगेगी। वेल, मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द मूवी काई पोचे, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2013, डायरेक्टेड बाय अभिषेक कपूर। मूवी के लीड्स थे सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव एंड अमित साड। म्यूजिक है अमित त्रिवेदी का, लिरिक्स है स्वानंद किरकिरे के। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, अमित त्रिवेदी और मोहन कनन ने क्या जस्टिस किया है इस गाने के साथ यार, स्पेसिफिकली गाने का ये पार्ट, हम करो वरना नासूर बनते उसको देर नहीं लगेगी। वेल, मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द मूवी काई पोचे, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2013, डायरेक्टेड बाय अभिषेक कपूर। मूवी के लीड्स थे सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव एंड अमित साड। म्यूजिक है अमित त्रिवेदी का, लिरिक्स है स्वानंद किरकिरे के। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, अमित त्रिवेदी और मोहन

पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्दों को दवा देंगे। हमारी जिंदगी में ये जो रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए सही रिश्ते बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके अप्स में तो सब खड़े होते हैं, असली रिश्ते तो तब पता चलते हैं जब आपका डाउनफॉल होता है। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। वैसे मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कुछ ऐसे ही गाने ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। यहाँ के अलावा कनेक्ट कर सकते हैं ना फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजाम और आज जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: ओह वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
5: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर, फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मॉमी।

भाई अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ट्रेंडिंग माँ बहन का ट्रेलर, भाई ये अपकमिंग फिल्म का नाम है, हाँ जी माँ बहन। आपको क्या लगा कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ, इतनी बेवकूफ लग रही हूँ क्या आपको? एनीवे, ये ओटीटी पे रिलीज होने वाली अपकमिंग फिल्म है जिसमें माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धारणा, हु स्टार्टेड हर करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये लीड रोल्स निभाते नजर आ रही है। द मूवी इज डायरेक्टेड बाय सुरेश त्रिवेणी, जो 4th of June से स्ट्रीम करना शुरू होगी। एंड ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये कॉमेडी ड्रामा लेकर आने वाली है एक टेंस लाफ आउट लाउड कवर अप गेम, जिसमें एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ काफी रोमांचक जिंदगी जीते नजर आ रही है। एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस वन। राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश स्टारर फिल्म रफ्तार की बात कर लेते हैं, जिसको एक नया रिलीज डेट मिल चुका है। हाँ जी, अब ये फिल्म थिएटर्स में अक्टूबर 16 को रिलीज होगी। बाकी आदित्य निम्बलकर डायरेक्टोरियल ये फिल्म इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग एड टेक सेक्टर को टच करने वाली है, विच इज गोइंग टू बी एन इमोशनल ड्रामा विद थीम्स ऑफ एम्बिशन एंड मॉडर्न एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। This is a major cross-industry collaboration जो किया है अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल के लिए विद भोजपुरी एक्टर एंड सिंगर अक्षरा सिंह। हाँ जी, इनका एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है घिस घिस घिस। ऑल्दो बीइंग अ बिहारी, मुझे कुछ खास समझ नहीं आया ये गाना, क्योंकि फिर से इसमें उसी तरीके के म्यूजिक और उसी तरीके के लिरिक्स का इस्तेमाल है जिससे हम बिहारी अपने आप को रिलेट नहीं करना चाहते। बट एज वी ऑल नो, बॉलीवुड और क्लीशे गो हैंड इन हैंड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। Stay tuned, it's hot.

0: अरे सूरज चाचू, हम सब तो छुट्टियां मना ही रहे, आप भी जरा छुट्टियां मना के आ ही जाएं।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो भाई साहब, अगर कोई मौसम है तो वो है छुट्टियों का मौसम, ईद अल अधा की ये खूबसूरत छुट्टियों का मौसम। एंड बस इसके चलते कहीं कुछ हो रहा है तो वो है हर घर में जश्न है, साथ ही कतर के कोने कोने में ये माहौल जो है हम जरूर फील कर सकते हैं। तो भैया, जब हम सब कोई इतने व्यस्त हैं इस अच्छे से मौसम को जीने में, यानी ये छुट्टियों को अच्छी तरह से बिताने में, तो मेरा इतना ही कहना है कि सूरज चाचू, आपको एक्स्ट्रा काम करने का क्या ही दिल कर रहा है, जरा आप भी छुट्टियां मना के आ ही जाएं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: लेकिन ना, इन्होंने तो मेरी बात ना ठानने का पूरी तरह से मान ही लिया है। जब जब हमारी छुट्टियां होती है ना, ये जो है काम में जरा ज्यादा लग जाते हैं। जरा देखिए, अभी गर्मी की छुट्टियां आएंगी और ये जो है कितना ज्यादा काम करेंगे। वैसे अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 32। बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गर्मी ग्रेजुअली बढ़ती ही जा रही है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है एंड दिमाग इन कलेजे की ठंडक के लिए एक ही काम करना है, सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन वर्षी। इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieta la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
3: हैं मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: This Eid, the magic comes alive at Abu Sidram Mall. Join Layali Eid at Abu Sidram Mall on 27th, 28th and 29th May from 6 p.m. to 10 p.m. and experience the spectacular Aladdin show, live entertainment, kids activities and much more. Abu Sidram Mall, your Eid destination.
6: Kya aap soch rahe hain ki what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
9: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी, शी इज अ सुपर।

0: का।
1: भाई मेरे अंदर के फेमिनिस्ट को ऑफेंड कर दिया है इस सीरीज ने।
2: ओटीटी एंड चिल।
1: आपके साथ श्रुति एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड वॉचिंग देसी ब्लिंग जो नेटफ्लिक्स पे फिलहाल स्ट्रीम कर रही है। 14 एपिसोड्स हैं इस सीरीज में एंड कसम से मैं चौथे पे ही एकदम सर पकड़ के बैठ गई थी कि भैया क्या हो क्या रहा है। सो इस सीरीज में आपको करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश लीड रोल्स में नजर आएंगे। बेसिकली ये दोनों दुबई शिफ्ट हो रहे हैं और वहां अपनी जिंदगी सेटल करने के लिए वहां के टॉप नॉच लोगों से मतलब अमीरों से मिल रहे हैं और ये अमीर दिमाग से बहुत गरीब है भाई, क्योंकि यहां एक बिलियनर बिल्डर है जिसकी बीवी उसे रोज सुबह पैरों में मसाज करके ही उठाती है। क्यों? क्योंकि सरजी को लगता है कि अगर पत्नी पति का पैर दबाए डेली सुबह तो घर में बरकत होती है, लक्ष्मी आती है, तरक्की मिलती है। सो इन शॉर्ट मेरे हिसाब से इट इज अ टोटल ब्रेन रॉट। ऑल्दो मैं मजे के लिए सीरीज को देख रही हूं ताकि लोगों को गालियां दे सकूं, बट जितने मेल शॉविनिस्ट्स हैं ना हमारी सोसाइटी में, दे वुड जस्ट एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट। देसी ब्लिंग इज द नेम। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

कॉमेडी के बादशाह होने के बावजूद 13 साल के करियर में पहली बार मिला इनको अवार्ड। व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूं क्या डायल नंबर, याद आई मूवी आपको, जल्दी से बोलो। हाँ ओके, सॉरी मैं चुप हो जाती हूँ। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ अबाउट द फिल्म हसीना मान जाएगी, जो 1999 में रिलीज हुई थी बाबू मोशाय, डायरेक्टेड बाय डेविड धवन, जिसमें गोविंदा, संजय दत्त, करिश्मा कपूर और उर्मिला मातोंडकर जैसे अमेजिंग स्टार्स थे। सो यस, टॉकिंग अबाउट गोविंदा, डिस्पाइट बीइंग इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट लीडिंग मैन इन द कॉमेडी जॉनरा, इस फिल्म की वजह से गोविंदा को पहली बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए 13 साल के अपने बॉलीवुड करियर में, जो उन्होंने फाइनली जीत भी लिया। सो या, कुछ अच्छी चीजों में देर भले लगती है, लेकिन वो मुकम्मल जरूर होती है। वेल, ऐसे ही किसी फिल्म के बारे में आपको भी कोई ट्रिविया जाननी हो बाबू मोशाय, तो उसका नाम मुझे बताएं मिर्ची श्रुति के नाम से, मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
2: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi, it's hot.

0: हमें छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
1: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी।

द होल थिंग इज दैट रुपया सबसे बड़ा है भैया. अब जब एक्सचेंज के रेट इतने कमाल हो तो पैसे को हम सर आंखों पे ना बिठाएं तो किसे ही बैठाएं. हैविंग सेड दैट आईपी मनी में अच्छे एक्सचेंज रेट्स का बोलबाला है. अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.13, पाकिस्तानी रुपीज 76.89, बांग्लादेशी टाका 33.67, नेपाली रुपीज 41.79 एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 88.27. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स ऑल एंजॉय.

0: हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: ऑफिस से अगर एक दिन, बस एक दिन हमने बिना किसी रीजन के छुट्टी ले ली तो कितना गिल्ट में पड़ जाते हैं नहीं हम?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और बताओ, आपने कभी ऐसा किया है कि ऑफिस से बिना बात के छुट्टी ली हो या लेने की सोच रहे हो, लेकिन फिर खुद ही को रीजन दे रहे हो कि यार वजह तो है नहीं, बस काम ना करने का दिल है, उसके लिए छुट्टी थोड़ी ना लेंगे, और खुद ही को हम गिल्ट कॉन्शियंस भी डाल देते। Just pause that thought there, because of the reason कि you know it's totally fine to take an off from your office बिना किसी reason के यार, just because इतने दिनों से you've been burnt out and you don't feel like doing anything, and you know ऐसी situation में ऐसा भी होता है कि आप ना आगे भी नहीं बढ़ सकते हो, like दिमाग से भी नहीं बढ़ सकते हो, लाइफ में भी नहीं बढ़ सकते हो, और आपको लग रहा होता है कि यार सब कितना मंडेन हो गया है, सब कितना बकवास हो गया है, लाइफ कहाँ जा रही है, खुद को सवाल कर रहे होते हो, जिंदगी से सवाल कर रहे होते हो, और फिर ये सवाल भी डाल रहे होते हो कि मैं छुट्टी क्यों लूं, कोई रीजन ही नहीं है। अरे है ना यार रीजन, देयर आर सच डेज। और मैं तो आपको कहती हूँ कि यार ऐसा अगर कोई दिन आज भी आपके आया हो तो छुट्टी ले लो बॉस, या हाफ डे लेके निकल जाओ, एंड यू नो गिव योरसेल्फ अ ट्रीट, गो टू अ नाइस प्लेस जहां पर आप अच्छा खाओ, अच्छा सा पहन के निकलो, या फिर घर पे पड़े रहो यार, कुछ मत करो, पूरे दिन जस्ट टीवी देखो, म्यूजिक सुनो, सो जाओ, यू नो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गिव योरसेल्फ दैट वन डे, बिकॉज आई नो फॉर श्योर कि एज एन अडल्ट वीकेंड्स भी हमारे लिए कम पड़ते हैं, बिकॉज वीकेंड पे ऑफिस का काम ना करते हुए हम घर के काम तो कर ही रहे होते हैं ना यार, तो छुट्टी तो हमारे यहाँ पे होती नहीं है ना यार, तो ले लो ये छुट्टी, यू डिजर्व इट, टेल इट टू योरसेल्फ, एंड इट्स टोटली फाइन अगर ये बर्नड आउट सेशन के बाद आप एक छुट्टी मांग रहे हो अपने आप से यार, दो ये छुट्टी खुद को, और बजा दो वो घंटी जो हमें स्कूल टाइम में जब लास्ट पीरियड में बजा करती थी तो ऐसी खुशी देती थी कि ये करते हुए हम क्लास से भागते हुए निकलते थे, तो दो अपने आप को ये खुशी। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको एक और खुशी दे रही हूँ, एंड दैट इज 90s के गाने और 90s की बातें। सो मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. La vizba la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है वो, क्या मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है, मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप ऊपर ला रहा हूँ।
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई, अचानक ऐसे हो गया रात, वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
3: मैं कहाँ पर हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई, क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
7: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी, शी इज अ सुपर।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अब्बास मस्तान ने सोचा था कि बाजीगर मूवी जो है वो सलमान खान के साथ बनाएंगे, लेकिन उनकी फर्स्ट चॉइस को किसी ने बोला पेंसिल और वो हो गई कैंसिल। लेकिन उनके दिमाग से ये बात गई नहीं कि उनको सलमान खान को अपनी फिल्म में कास्ट करना है। 7 साल बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई एंड फाइनली सलमान खान वॉज द हीरो।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara. And the movie that I'm talking about is Chori Chori Chupke Chupke. Salman Khan ne is movie ke andar halaki ek bada hi sober role play kiya tha, jo ki us zamane mein wo nahi kar rahe the. Matlab at that time wo thode flashy roles kar rahe the, loud roles kar rahe the. And also, is film ke andar khas baat ye thi ki unhone apni jo shirt thi wo ek baar bhi nahi utari thi. Wo daur aisa tha jab Salman Khan is charcha mein hua karte the ki shirt utar di bhai. Bhai ne shirt utar di. पहले लोगों को बुरा लगने लग गया, फिर उसके बाद लोगों को अच्छा लगने लग गया। हालांकि ये जो फिल्म है ये शर्ट की वजह से कंट्रोवर्सी में नहीं आई थी, ये एक्चुअली कंट्रोवर्सी में आई थी एक थोड़े ज्यादा सीरियस मुद्दे की वजह से, एंड दैट वाज सरोगेसी। बिकॉज दिस वाज अ टॉपिक जो उस जमाने में बहुत वेल नोन या बहुत ज्यादा स्पोकन अबाउट नहीं था। तो आपको एक बात बता दूं, ये फिल्म वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम एन 80s की फिल्म जिसका नाम था दूसरी दुल्हन, जिसमें भी यही वाली बात होती है कि एक चाइल्डलेस कपल है जो कि एक दूसरी लेडी को लेकर आते हैं टू वर्क एज अ सरोगेट मदर टू देयर किड एंड देन इवेंचुअली दे हैव अ चाइल्ड। और यही स्टोरी चोरी चोरी चुपके चुपके की भी थी। और मजे की बात तो ये देखो कि 1983 में बनी दूसरी दुल्हन तब भी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ तमिल फिल्म जिसका नाम था अवन अवल अधु, जो कि 1980 में बनी थी। नाउ आई एम थिंकिंग कि यार ये जो कॉन्सेप्ट था सरोगेसी का, ये तो हमें कितना रिसेंट लगता है ना, लाइक अब तो बॉलीवुड में इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। लेकिन जब 2000 में इसके बारे में हो हल्ला हो रहा था तो 80s में क्या हुआ होगा, लोगों ने कैसे इसको एक्सेप्ट किया होगा, या यूं कहो कि लोगों ने इसके बारे में फिल्म बनाने की भी सोची भी कैसे, क्योंकि इस चीज को लेकर तो किसी को अवेयरनेस नहीं थी। ये फिल्म मेकर्स को कहां-कहां से ये सारी बातें पता लग जाती हैं यार, कमाल है नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: चोरी चोरी चुपके चुपके well, ये फिल्म दो कंट्रोवर्सीज में रही. एक तो सरोगेसी को लेकर, इस टॉपिक को लेकर लोगों ने इस फिल्म के बारे में काफी चर्चा करी, और दूसरी जो कंट्रोवर्सी थी दैट वाज अराउंड सीबीआई.
0: चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड वेल, हुआ ये था कि सीबीआई जो थी उनकी नजर इस फिल्म में पड़ी थी, क्योंकि इस फिल्म में कहा जा रहा था कि जो पैसा लगाया गया है वो माफिया का है, अंडरवर्ल्ड का है. आज हमें लगता है बहुत बड़े बड़े लव्स हैं, ऐसा तो होता ही नहीं होगा, लेकिन उस जमाने में ऐसा हुआ करता था. एंड यू नो, जब ये बात आई कि अंडरवर्ल्ड ने इस फिल्म को फंड किया है, तो सीबीआई ने इस फिल्म के प्रिंट्स ही सीज कर लिए थे. और बाद में से बात ये निकल कर आई थी कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, जो कि एक डायमंड मर्चेंट थे, उनका नाम था भरत शाह, उनको जो अंडरवर्ल्ड है, माफिया है, उन्होंने पैसा दिया था कि इस फिल्म के अंदर लगाओ, और उन्होंने लगा दिया. जब सीबीआई को ये बात पता लगी तो फिर गहरी तफ्तीश हुई इस चीज को लेकर, और मूवी का जो रिलीज था वो भी डिले हो गया था. आई एम श्योर इस बात को जानने के बाद करीना कपूर ने बड़ी गहरी सुकून की सांस ली होगी कि उन्होंने ये फिल्म नहीं की, क्योंकि सबसे पहले करीना कपूर वाज सपोज्ड टू डू द फिल्म, जो उन्होंने फॉर सर्टेन रीजंस मना कर दिया, एंड शी वॉक्ड आउट ऑफ द फिल्म, एंड देन केम इन प्रीति, जबकि 24 दिन की शूटिंग हो चुकी थी. नॉट जस्ट करीना कपूर, इनफैक्ट इस फिल्म के लिए काफी सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था, जैसे सुष्मिता सेन, तबू, ऐश्वर्या राय, बिपाशा बसु और अमीषा पटेल, लेकिन इन सभी एक्ट्रेसेस ने प्रीति जिंदा वाला कैरेक्टर करने से मना कर दिया था. हालांकि फिल्म कंट्रोवर्सीज में आई, कैरेक्टर एक्ट्रेसेस को अच्छा नहीं लग रहा था इवेंचुअली कि उन्होंने ये फिल्म नहीं की, क्योंकि सबसे पहले करीना कपूर वाज सपोज्ड टू डू द फिल्म, जो उन्होंने फॉर सर्टेन रीजंस मना कर दिया, एंड शी वॉक्ड आउट ऑफ द फिल्म, एंड देन केम इन प्रीति, जबकि 24 दिन की शूटिंग हो चुकी थी. नॉट जस्ट करीना कपूर, इनफैक्ट इस फिल्म के लिए काफी सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था, जैसे सुष्मिता सेन, तबू, ऐश्वर्या राय, बिपाशा बसु और अमीषा पटेल, लेकिन इन सभी एक्ट्रेसेस ने प्रीति जिंदा वाला कैरेक्टर करने से मना कर दिया था. हालांकि

बाय द वे डिड यू नोटिस एंड डिड यू नो कि प्रीति जिंटा का जो कैरेक्टर है वो पूरा का पूरा कैरेक्टर स्केच हैज बीन कॉपीड फ्रॉम प्रीटी वुमन, जूलिया रॉबर्ट्स वाला जो कैरेक्टर था। नोटिस करना जब भी आप जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गियर को इस मूवी में देखते हो तो। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, नहीं अभी टाइम नहीं मिलता है, और दूसरी बात अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: Marhaba Doha, something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand, R&B, has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
6: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके। और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
8: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का HR, फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी।

0: Mirchi Mommy. 89.6 Mirchi won Mirchi Mommy Award.
1: Johan.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: चोरी चोरी चुपके चुपके करने के बाद प्रीति जिंटा और सलमान खान के बीच में बहुत बड़ा टसल हो गया था, जिससे कि जाने मन की शूटिंग रुक गई थी। भाई
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड हुआ ये था कि जब सलमान खान और प्रीति जिंटा ने चोरी चोरी चुपके चुपके के लिए शूट किया था, और फिर ये कहा जा रहा था कि ये फिल्म जो है ये अंडरवर्ल्ड ने फंड करी है एंड ऑल दैट, तो ऑफ कोर्स उस जमाने में बात ऐसी थी कि सबके फोन्स भी टैप किए जाने लगे थे। काफी सारे टेप्स तो हमने भी सुने बड़ी इंटरेस्टिंगली, एंड वो जो टेप्स थे उनमें से एक सलमान खान का भी था, जिसमें कि वो कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में बुरा भला कह रहे थे, और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने प्रीति जिंटा के बारे में भी कुछ कह दिया था, जिससे प्रीति जो थी वो बड़ी नाराज हुई। एंड एट दैट टाइम सलमान और प्रीति जाने मन मूवी के लिए शूट कर रहे थे, तो प्रीति जिंटा ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि मैं सलमान के साथ शूट नहीं करूंगी। अब इससे पहले कि कोई बोलता पेंसिल और हो जाती ये फिल्म कैंसिल, जैसे तैसे करके इन दोनों के विवादों को किसी तरीके से सुलटाया गया, इन्हें बिठाया गया, बात करवाया गया, क्लैरिटी मिली, एंड देन उसके बाद प्रीति वॉज टोटली फाइन एंड शी बिगैन वर्किंग विद सलमान खान अगेन फॉर द फिल्म जाने मन। उफ़ माय गॉड, बड़े होते होते कितनी सारी चीजें बदल जाती है ना यार, क्योंकि बचपन में जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी ना, तो हम तो बस इतना कहते थे कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, और सारे के सारे जो है वो याद भी कर लिया करते थे और माफ भी कर दिया करते थे। बड़े होने के बाद ऐसा नहीं होता है बॉस, काफी उलझने हो जाती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, poscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
4: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
3: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
4: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
3: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
4: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
3: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
4: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
3: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
4: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
3: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
4: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
3: नहीं, मेरे को दिए आपने?
4: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
3: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
4: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
3: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
4: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा
3: कैंसिल? मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
4: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
3: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
4: हाँ जी।
3: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
4: गलती होगी साहब जी,
3: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
4: पकड़ ले।
3: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
6: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
8: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का HR, फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी।

0: मेरा दिल ना हमेशा लड़ रहा होता है इस चीज को लेकर कि मुझे हम तुम का ये वाला टाइटल ट्रैक जो कि अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज में वो पसंद आता है, या फिर वो पेपी वाला टाइटल ट्रैक जिसका पिक्चराइजेशन भी बड़ा पेपी सा था, मेरे दिल विच है हम तुम, वो ज्यादा पसंद आता है। हमेशा मैं कंफ्यूज रहती हूँ। बट यू नो म्यूजिक इज ऑल अबाउट मूड, मतलब आप कौन से मूड में होते हो ना वो डिसाइड कर रहा होता है कि आपको कौन सा गाना पसंद आ रहा होता है। अगर आप रोमांटिक मूड में हो तो आपको ये गाना पसंद आएगा, और अगर आप पेपी वाले मूड में हो ना, गाड़ी में यू नो गाने चलाते जा रहे हो और आपको चाहिए कि यार ये जो ट्रैफिक है ये हमारा माथा ना खराब करे और सिर्फ हम थिरकते रहे अच्छे गानों के ऊपर, तो देन मेरे दिल विच है हम तुम। मैं कभी डिसाइड नहीं करती कि ये गाना बेस्ट है। कोई भी गाना बेस्ट नहीं होता है यार, सारे गाने अच्छे होते हैं, और बेस्ट वो तब बन जाता है जब किसी मूड में वो हमारे दिल को छू रहा होता है, तो वो उस टाइम के लिए बेस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही पल बदला, मूड बदला, गाना बदला, तो हम अलग सोचने लग जाते। ओ माय गॉड, मेरी बातें मुझे ऐसी क्यों लग रही हैं जैसे आजकल के रिलेशनशिप में कमिटमेंट्स?
1: सारा ज़माना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, अब आगे बढ़ते हैं मेरे यारा। देखो यार, सीन ऐसा है कि अब बारी है मान ना मान कर गानों की पहचान की। तो अभी क्या होगा कि मैं दो गानों की धुनें आपस में मिक्स करके आपके लिए चलाने वाली हूँ, आपको सुनाने वाली हूँ, और आपको गेस करना है कि ये जो दो धुनें आप सुनोगे ये कौन से दो गानों की है। सो कान लगा के बैठो एंड गौर से सुनो।

पास जी, अब आपको डीएम करना है और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो और स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज हॉट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मैंने प्यार किया का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, सुकून लगता है मुझे ये गाना। लेकिन हाँ, इसी के साथ ये बात भी है कि ये अपना माल नहीं है, चोरी का माल है।
1: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
0: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, the song that I'm talking about is राम लक्ष्मण की जोड़ी का कॉम्पोजिशन, SP बाला सुब्रमण्यम एंड लता जी की आवाज में।

जिसे गाया स्टीवी वंडर ने था। एंड आई वंडर कि आई स्टिल लाइक द हिंदी वर्जन मोर, कॉज इस गाने के लिरिक्स ज्यादा जोर से हिट करते हैं ना यार। हाँ, बॉलीवुड के प्रति बायस तो हो गई, और वो भी 90s के बॉलीवुड के लिए, तो व्हाई नॉट। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
1: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है.
5: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी. ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी. शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मॉमी.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज ही मैंने ऑफिस में नरसी भैया से पूछा अपना सैलेड खाने के बाद वो जो डब्बा था उसके लिए कि नरसी भैया आप लोग इन डब्बों को धो धो के रखते हो क्या? क्या करूं, मेरे अंदर का मिडिल क्लास इंसान तो कहीं जाने नहीं वाला। नरसी भैया ने बोला कि नहीं मैडम, तो मैंने वो डब्बा फेंक दिया। लेकिन 90s में ऐसा नहीं हुआ करता था भाई, इतना सुंदर डब्बा कोई वेस्ट नहीं करता था।
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and specially वो टिन के डब्बे जिनमें की बटरी सी खुशबू आती थी काफी दिनों तक, क्योंकि उनके अंदर आती थी बटर कुकीज। वो कुकीज तो हम खा लिया करते थे फटाक से झटाक करके, लेकिन वो डब्बे जो थे वो रह जाया करते थे। उनको मजाल है कि किसी ने हाथ लगा के डस्टबिन में फेंक दिया हो ही नहीं सकता था। वो डब्बे तो इस घर में इसीलिए आया करते थे ताकि फिर उनके अंदर सुई धागे के किट रखे जाए, एंड इवेंचुअली होता भी वही था। अब तो मुझे बड़ी याद आती है यार उन किट्स की, बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार आजकल तो बड़े फैंसी फैंसी से किट्स आने लग गए हैं। डिपार्टमेंट स्टोर पर फैंसी फैंसी स्टोर्स होते हैं, उनमें फैंसी फैंसी स्विंग किट्स होते हैं, लेकिन हमारे बचपन के टाइम में तो ये टिन के डब्बे हुआ करते थे जिनके अंदर हमारी नानी दादी फिर मम्मियां मासी उन्होंने सारे के सारे अपने ये जो सिलने के खजाने होते थे वो रखे हुए होते थे। अलमारी खुलती थी और सारे तय किए हुए कपड़ों के ऊपर रखा हुआ होता था वो टिन का डब्बा भी, और बड़ा खूबसूरत लगता था यार ये टीन का डब्बा। बाहर से टीन का होता था, उसके ऊपर जो भी डेंटिंग पेंटिंग की हुई है वो तो की हुई है, और जब ये डब्बा खुलता था तो अंदर रंग बिरंगी दुनिया सामने आ जाया करती थी। इस टीन के डब्बे के अंदर रखे हुए उस स्यूइंग किट की जो यादें हैं वो आज भी हमारी जिंदगी में काफी सारी चीजें रफू कर जाती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na
1: pierdala burka. Milci, burka. हेलो।
2: हाय, आप अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहे। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1st September 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह। गर्लफ्रेंड्स से ज्यादा करता हूँ बातें।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं।
1: मेरे साथ
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। Marhaba Doha, something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
6: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
7: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का HR, फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मॉमी।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear बचपन की मम्मी वाली कॉफी.
2: यादों को चिट्ठी.
1: तुम्हें याद करके आज भी ना होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है. वो दौर ही कुछ और था यार, जब कॉफी का असली टेस्ट नहीं बल्कि माँ के हाथों का प्यार मायने रखता था. तुम असल में कॉफी थी भी कहाँ, बस गरम दूध में चुटकी भर कॉफी पाउडर घुला कर मम्मा मेरे छोटे से कप में डाल देती थी और मैं खुद को बड़ा समझ कर घूट घूट पीती रहती थी. तुम्हारा हल्का सा झाग, वो मीठी सी खुशबू और कप को दोनों हाथों से पकड़ कर सुड़कने का अपना ही मजा हुआ करता था. मम्मा पूछती थी, बड़ी वाली कॉफी चाहिए या छोटी वाली, और मैं हमेशा बड़े होने की जल्दी में बड़ी. लेकिन मम्मा हंस कर वही पुरानी जानी पहचानी हल्की सी कॉफी थमा देती थी. तब समझ ही नहीं आया, लेकिन अब एहसास होता है कि तुम सिर्फ एक पीने की चीज नहीं थी, तुम तो माँ के दुलार का हिस्सा थी. अब जब असली कड़वी कॉफी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई है ना, तो तुम्हारी मिठास और भी याद आती है. काश एक मौका मिल जाए बचपन में जाने का, तो एक बार फिर वही प्याली पीऊंगी जिसमें कॉफी कम और बचपन ज्यादा घुला होता था. आज दूध के बिना कॉफी पीने वाली, लेकिन तुम्हें दिल से याद करती हुई तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची 90's कैसेट।
1: क्या हुआ, आपको भी आपका दिल नहीं मिल रहा है? इधर उधर ढूंढ रहे हो, ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो यहाँ था, अभी कहाँ गया?
2: हो गया है तुझको तो प्यार सजना।
1: ऑफ कोर्स मैं ये गाना नहीं गाने वाली हूँ, लेकिन हाँ इस गाने के बारे में आपको बताने जरूर वाली हूँ। वेल, ये गाना शुरू से लेकर एंड तक इज जस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल। जहाँ शुरुआत होती है वहाँ ये पूछा जाता है कि ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। और यही खूबसूरत बात है प्यार की। मतलब जो अदा मोहब्बत में दिल चुराने की होती है ना, वो अदा तो धूम में चोरी की भी नहीं थी यार। एंड इस गाने के अंदर देयर इज दिस वन पैराग्राफ जहाँ पर वो जो एक टेंशन नहीं होती है कि दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को बताना चाह रहे हैं, लेकिन यू नो समहाउ देयर इज सम टेंशन, बोल नहीं पा रहे हैं। तो बंदा कंप्लेन करता है कि देखा ना तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था। हाय, ऐसा बंदा किसी सिंगल को मिल जाए मेरी तो ये दुआ है। बंदी पलट के तब कहती है कि जब दिल ने तुझको रोकना चाहा, दूर तू जा चुका था। यानी कि रियलाइजेशन करने में बंदी को जरा सा टाइम लग गया। और उसी वक्त हुआ क्या न जाना, ये दिल क्यों दीवाना। एंड जो हम कहते हैं ना कि प्यार में हम खुद को खो बैठते हैं, उसको बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ये कहते हुए कि ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा दौड़ पीछे, मैं छोड़ आई खुद को जहाँ पे, वो रह गया मोड़ पीछे। मगर एक सच्ची बात है यार, प्यार में जब आप पड़ जाते हो ना, तो वो जो आप अपने आप को जरा सा खो देते हो ना, वो एक परसेंटेज ऑफ यू इज जस्ट लॉस्ट समवेयर उस मोहब्बत में, वो शायद ही वापस आता है, क्योंकि आप एक बदले हुए इंसान बन जाते हो। तभी तो जब प्यार में दिल टूट जाता है तो इंसान को सबसे ज्यादा फिक्र इस चीज की होती है कि उसके लिए हम तो वो रहे ही नहीं जो हम कभी हुआ करते थे। यही तो है प्यार की ये अदा, इंसान को खुद भूल जाने पर मजबूर कर देता है। और एक वक्त पर इंसान को अपनी ही ये अदा इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि वो ये करता चला जाता है। चलो जी, अब इस गाने को आपके लिए मैं लगा के ही मानूंगी। तो ये गाना जाते जाते आपके लिए, एंजॉय द ट्रैक। और यहाँ से निकलते निकलते आपसे ये बात कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा तो मैं आपको मिली जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लता जी और उदित नारायण की आवाज में क्लासिक डीडीएलजे से ये क्लासिक गाना इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
6: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी।

0: Every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever.
1: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है शाम के 4। मस्त मौला गौरव के साथ शुरू होता है शाम शानदार।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट

0: चांद की रोशनी, दुआओं की बरकत और रिश्तों की गर्माहट लेकर आई है आपके लिए ईद अल अदा। मिर्ची ईशा आ चुकी है आपकी शाम को शानदार करने, जहाँ पे हम बातें करेंगे खूब सारी और उसके अलावा गाने सुनेंगे एकदम मस्त वाले, और आपको बताऊंगी कि इस समय ईद के मौके पे कतर में क्या क्या होने वाला है। हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कुछ शोज, लाइव परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, जहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि इन चंद दिनों में आपको ईद का इतना कुछ सेलिब्रेशन मिलेगा करने के लिए कि आपको समझ नहीं आएगा कहाँ जाए और क्या करें। बस आपका काम आसान करने के लिए मैं आ गई हूँ, यानी कि मिर्ची ईशा, आपकी शाम को शानदार करने के साथ साथ आपकी ईद को भी और चार चांद लगाने। बस उसके लिए क्या करना, ट्यून इन रखना मेरे साथ आपने अपने आप को और सुनते रहना मुझे 89.6 मिर्ची 1 पे। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. La vieva la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो
2: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: हैं मोबाइल पे
1: और क्या?
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है? दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब?
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है? पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद।
1: डिस्टर्बेंस आ रही है।
3: पायल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, थोड़ा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
6: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का एचआर फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी।

0: मौसम के मिजाज कुछ नेक नहीं लग रहे।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: जी हाँ, दिन में होने वाला है 39 डिग्री सेल्सियस, फुली सनी। ये आपको महसूस करवाएगा 41 डिग्री। जी हाँ, एक्सेसिव हीट पूरे दोहा कतर में आपको मिलेगी। शाम में हल्की सी हवाएं चलेंगी अनडाउटेडली, बट ज्यादा ठंडी नहीं होगी, थोड़ी बहुत गर्मी हवाएं चलती रहेंगी। कि अगर आपको अपना ख्याल रखना ना, तो पानी पीते रहिए, क्योंकि एसी आपके बॉडी को ड्राई आउट करता है। सो जस्ट मेक अ रिमाइंडर इन योर फोन कि भाई पानी पीना है। बस उसी के साथ आपको सुनते रहना है मिर्ची ईशा को, जो आपकी शाम को शानदार बनाने आ चुकी है। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची, it's hot. Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it, wear it.
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: This Eid, the magic comes alive at Abu Sidram Mall. Join Layali Eid at Abu Sidram Mall on 27th, 28th and 29th May from 6 p.m. to 10 p.m. and experience the spectacular Aladdin show, live entertainment, kids activities and much more. Abu Sidram Mall, your Eid destination.
3: Hello shops. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine baba ji se advice li to kehte hain,
4: office ke toilet mein toilet paper white nahi yellow lagao, profit aayega.
3: Relative se advice lo to kehte hain,
5: kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
3: Isiliye main aapke paas aaya hu promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
6: Bhai kya kar raha tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
7: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

कतर में हया बया सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि बच्चों परिवारों और संस्कृति से जुड़ा एक बहुत प्यारा ट्रेडिशनल एहसास माना जाता है। दोस्तों कतर में होने वाला हया बया होता है ठीक ईद अल अदा से एक दिन पहले, जहां पे बच्चियां ट्रेडिशनल कपड़े डालकर फैमिली के साथ जाती हैं सी साइड, जहां पे हम देखते हैं कि बच्चियां हाथों में हरे रंग के पौधे का गमला लेकर निकलती हैं सी साइड की तरफ। गाना हया बया गाने के बाद उसको फेंकती हैं सी में। दैट इज अ ट्रेडिशन जो फॉलो करा जा रहा

0: है बहुत सालों पहले से अब तक। एंड ये ट्रेडिशन बेसिकली ईद अल अदा से पहले किया जाता है, और ये मौका कि हम किस तरीके से अपने रिचुअल, अपनी रूट्स के साथ कितना ज्यादा प्यार करते हैं और जुड़े हैं। और हया बया हमें याद दिलाता है कि ईद सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि कल्चर और साथ में रहना, बच्चों की मुस्कुराहटों का खूबसूरत संगम है। बस ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot.
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
2: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोर्डल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand, R&B, has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
5: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
6: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का HR, फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मम्मी।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची के स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अब बात करते हैं बहुत सीरियस विषय की, यानी कि मनी एक्सचेंज की। जी हाँ, बात करें मनी एक्सचेंज रेट्स की तो 1 Qatari rial into Indian rupees is 26.17 and 1 Qatari rial into Sri Lankan rupees is 88.48 and Bangladeshi taka is 33.68 and 1 Qatari rial into Nepali rupees is 41.76 and 1 Qatari rial into Pakistani rupees is 76.89. ये हाल चाल था हमारे मनी एक्सचेंज का। बाकी for more updates, stay tuned with me only on 89.6 Mirchi One, it's hot.

0: Mirchi. Fresh Maal.
1: Romantic feels और soulful melody के लिए सुनो खासियत।

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieta la burka. Milci, burka.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है वो, क्या मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है, मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप पर ला रहा हूँ।
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई, अचानक ऐसे हो गया रात, वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
3: मैं कहाँ पर हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई, क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मम्मी छोड़ो यार, आप नहीं समझोगी मैनेजर का काम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
6: जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट हो वो मैनेजर का रोल नहीं समझेगी। ग्रो अप सन, शी इज द ओजी मैनेजर ऑफ एवरी घर, जिसने तुम्हारा बचपन संभाला और पापा के पापा का बुढ़ापा भी, घर का HR, फाइनेंस संभाला और बाहर की दुनिया ने सराहा भी। शी इज नॉट जस्ट अ मम्मी, शी इज अ सुपर मॉमी।

0: एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको ईद की एक्टिविटीज का मिलेगा भरमार। बात कर रही हूँ DFC यानी कि दोहा फेस्टिव सिटी की, जहाँ पे होने वाली हैं बहुत सारी एक्टिविटीज। एक ऐसी जगह जहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फेस पेंटिंग, एरबिक कैलीग्राफी, स्टोरी टेलिंग या पोएट्री सेशंस, हीना एप्लीकेशन, ट्रेडिशनल गेम्स, एरबिक कॉफी, स्विंग वर्कशॉप, पियानो परफॉर्मेंसेज, लाइव परफॉर्मेंसेज। ओ माई गॉड, इतना कुछ मिल रहा है आपको DFC में। तो भाई, ईद की सेलिब्रेशन है, कुछ तो खास बनता ही है ना। तो इतनी सारी एक्टिविटीज के साथ आपको जाना चाहिए DFC। एंट्री टोटली फ्री है एंड अंटिल 2 जून तक है ये। तो भाई 2 जून तक चल रहा है कि आई कैन जा सकते हैं इन ईद की छुट्टियों में, खुशियां बांटी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। और इस इवेंट को भूलिएगा मत, जाइएगा और एंजॉय करिएगा। स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची इट्स हॉट मरहबा दोहा, समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर। योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर। सेलिब्रेट इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट ट्रेंडी फैशन अक्रॉस विमेन मेन एंड किड्स। एंड द सेलिब्रेशन डजंट स्टॉप, गेट फ्री QAR 50 गिफ्ट वाउचर ऑन शॉपिंग ऑफ QAR 200। मोर फैशन मोर वैल्यू मोर रीजंस टू शॉप टुडे। हेड टू द न्यूली ओपन्ड R&B स्टोर एट दोहा सिटी सेंटर सेकंड फ्लोर टुडे। R&B लव इट वेयर इट। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कतर की अगर आप लोकेशंस चेक करोगे ना, कभी कभी फीलिंग आता है या आप यूरोप में पहुंच गए, या आप लंदन में पहुंच गए, या आप कहीं और हो। इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि क्या ही कहने। उसमें से मेरी एक फेवरेट है कनत कातिर, जी हाँ, द पर्ल दोहा, जहाँ पे आपको एक बहुत खूबसूरत मार्केट लगी मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ टोरबा मार्केट की, जो ऑन द ब्रिज है, जहाँ पे आपको मिलेंगी वो सब खूबसूरत चीजें, चाहे वो हैंडक्राफ्टेड हो, चाहे कुछ बैग्स हो, फ्रूट स्टॉल्स एंड वेजिटेबल स्टॉल्स भी आपको मिलेंगे। एकदम आपको वाइब देगा, नेचर के साथ शॉपिंग करने की जो वाइब होगी ना, वो एकदम टोपी में रिलीज करेगी आप। इसका टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि ये 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक होती है। थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाता है। उसके अलावा बता दूं ये 30 मई तक है, तो आप आराम से जा सकते हैं। किसी भी दिन जाइए और एंजॉय करिए फैमिली के साथ। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड सॉल्ट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand, R&B, has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
6: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 और आप सुन रहे हैं शाम शानदार मस्त मौल गौरव के साथ।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट

0: ईद के समय ना कतर में इतने सारे इवेंट होते हैं कि भाई समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं क्या करें। और फिर आती है मिर्ची ईशा जो आपका काम थोड़ा सा आसान कर देती है। जी हाँ, द मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी इन कोलैबोरेशन विद विजिट कतर एंड कतर कैलेंडर उन्होंने अनाउंस किया है कि 2026 की ईद अल अदा फैमिली फेस्टिवल जो होगा दैट विल बी इन 974 बीच। यस, इस बीच में आपको ईद सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पे होने वाली है बहुत सारी एक्टिविटीज, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी। तो ये होगी 28 मई से लेके 29 मई तक एंड जहाँ पे टाइमिंग इसका 4 PM टू 8 PM डेली है। आप बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिस कर देंगे अगर आप जाएंगे नहीं, तो जल्दी से जाइए अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, प्लान करिए अकॉर्डिंगली और एंजॉय करिए इस ईद को। स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi. Iskaba na puskaba na sakaba na. Rabala. Burga, burga. Na virba la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो भाई मंजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख कराए से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसमें था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा? मैंने तो बस सूचित करना था, करना, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ ले,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
4: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: घर दे कम ना रुकणगे, ओ जिम विच फट्टे चक्कांगे।
6: You better watch her shine.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do this.

0: कुर्बानी, इंसानियत और भाईचारा, यही पैगाम लेकर आता है ईद अल अदा। बात करें ईद की प्रेयर्स की, तो मैं आपको बता दूं कि ईद की प्रेयर्स होने जा रही हैं एजुकेशन सिटी स्टेडियम में, जहां पे डोर्स ओपन हो जाएंगे 2:30 बजे सुबह के। एंड आप ये 27th को यहां पे प्रेयर के लिए गैदर हो सकते हैं। 27th मई को 2:30 बजे डोर्स ओपन हो जाएंगे। एंड उसके अलावा जो शुरुआत होगी प्रेयर की, दैट विल बी 5 AM इन द मॉर्निंग। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम भी एजुकेशन स्टेडियम में जाके इकट्ठा हो, कि सभी घर वाले वहाँ जाके प्रेयर्स करें साथ में, अपनों के साथ साथ में मिलकर अगर प्रेयर करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं एजुकेशन सिटी स्टेडियम। उसके अलावा देखिए, सेवइयों की जो मिठास होती है ना, बस वो ही मिठास आप सभी के जीवन में आए, रिश्तों में आए। अल्लाह ताला आपको खूब सारी बरकत बख्शे। और बस आपको ईद मुबारक। सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
2: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
3: मिर्ची इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
4: अर्ज किया है
5: इरशाद। इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
2: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

आराम से बिना गर्मी गर्मी बोले इंजॉय कर सकते हैं इवेंट को आउटडोर एक्टिविटीज़ में, जहां आपको मिलेंगी बहुत सारी किड्स क्यूरेटेड एक्टिविटीज़, जहां पे हीना आर्ट के अलावा आपको लाइव परफॉर्मेंसेज मिल सकती हैं, ट्रेडिशनल अर्धा, रोमिंग मास्कट्स एंड चिल्ड्रंस की स्टेज परफॉर्मेंसेज मिल सकती हैं. और क्या चाहिए, इसके अलावा ट्रेडिशनल बहुत सी कतरी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी. इसके अलावा आपको बस जाना है और इंजॉय करना है, बच्चों को लेके जाइए और इस ईद एंजॉय करिए. एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. इट्स हॉट.

मिर्ची आ चुकी है शाम शानदार में आपके साथ बहुत सारी बातें करने और बहुत से इवेंट्स बताने। जी हाँ, अभी ईद का मौका है और बहुत सारी सेलिब्रेशंस कतर में चल रही हैं। और उसके तहत आपको एक और जगह बता दूं, पर्ल आइलैंड एंड गिवान आइलैंड, जहाँ पे होने वाली है ईद अल अदा की बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एसी है, आउटडोर भी एसी है गिवान आइलैंड, जहाँ पे आप

0: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दे. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
1: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
3: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand, R&B, has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
4: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.

0: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल.

0: ईद अल अदा जो जोड़ती है एक फैमिली का प्यार मोहब्बत और लोगों के साथ कैसे घुल मिल के रहना है, ये हमें ईद ही सिखाती है। जहाँ सबसे पहले शुरुआत की जाती है प्रेयर से, फैमिली सारी गैदर होके इकट्ठा एक परिवार ईद मुबारक करते हुए प्रेयर से अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। फिर आती है स्पिरिट ऑफ उदिया, जहाँ पे गिविंग एंड शेयरिंग सबसे ज़्यादा की जाती है एंड फैमिलीज को सपोर्ट किया जाता है कि किस तरीके से हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ प्यार बनाए रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फैमिली विजिट्स के साथ ईद की और खुशियां बांटते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ मिलते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलते हैं। जितना ही प्यार बांटते हैं, जितना ही लोगों से मिलते हैं, उतना ही प्यार हमारे आपस में और बढ़ता है। फिर बारी आती है मजलिस गैदरिंग्स की, जहाँ पे गेस्ट को वेलकम किया जाता है गावा के साथ, डेट्स के साथ, स्वीट्स के साथ एंड वार्म कॉन्वर्सेशंस के साथ। बस ऐसी ही और खूबसूरत बातें ईद की आपके साथ करती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. Na vjet bala burka.
1: Milci burka. हेलो।
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर,
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's hot.
5: Marhaba Doha, something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
7: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the

0: हरगिज झुकेगा नहीं साला।
1: बात करें ईदिया की तो बच्चों में ईदी बहुत फेमस है। जहाँ बच्चों को ईदी देकर दिखाया जाता है कि उनसे बहुत ही हमें प्यार है, क्योंकि उनको दिया जा रहा है प्यार जो बड़े बुजुर्ग उनको ईदिया के फॉर्म में देते हैं। ईद की जो एलिगेंस होती है ना, वो सिर्फ कपड़ों के साथ जुड़ी नहीं होती। उसके अलावा आप औद परफ्यूम्स की बात करें या फिर बुखूर की बात करें, ये आपको एक अलग ही फीलिंग देता है ईद की। एंड अगर हम बात करें शेयरिंग एंड केयरिंग की, तो आगे बढ़ते हैं, तो शेयरिंग एंड केयरिंग ईद का सबसे बड़ा पार्ट है। जहाँ पे ईद अल अदा हमें ये याद दिलाता है कि हमें उदिया के थ्रू, चैरिटी के थ्रू, हॉस्पिटैलिटी के थ्रू ये अदा करना ही करना है। यानी कि लोगों की मदद करना और लोगों से शेयरिंग करना बहुत ही कीमती चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। बस इसी के साथ ईद की फेस्टिविटीज़ चलती रहेंगी और भी खूबसूरत बातें हम ईद की करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
3: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
4: मिर्ची, it's hot. Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके। और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamond

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

वो कहते हैं द फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर. तो फिर बारी आती है ईद के टेबल की. ईद के समय जब सब इकट्ठा होके खाना खाते हैं, सेवइयां खाते हैं और अलग अलग पकवान का स्वाद लेते हैं, तो उस समय जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं और उस समय जो आप इकट्ठा बैठ के सभी फैमिली मेंबर्स बैठ के खाना खाते हैं, उसमें लाजवाब मज़ा आता है. वैसा मज़ा जो हम बयां नहीं कर सकते. वो खुशी हर एक के चेहरे पे, वो प्यार हर एक के साथ जो आपको उस समय मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता. तो बस इसी के साथ ईद की सेलिब्रेशन बढ़ती जाती है, खूब सारी बातें होती हैं, एक पूरी फैमिली इकट्ठा होती है ईद पे और एंजॉय करती है इस ब्यूटीफुल से फेस्टिव को. आप सभी को ईद मुबारक और अब लेती हूँ आपसे अलविदा. समय हो गया है मेरा जाने का. चलती हूँ, मिलूंगी इस वीकेंड. टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
1: आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.

0: మిర్చి హెల్ప్లైన్.
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे समझाऊँ?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना.
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस.
3: बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे.
4: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपका ताशी, और आज एक बड़ा खूबसूरत शेर मिला जिससे इस महफिल की बैठक की शुरुआत करना चाहूंगा मैं। और आपने वो गाना सुनाई है अगर तुम साथ हो, और उसमें एक लाइन आती है जिसमें वो कहते हैं कि तुम पास हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है। उसी पे मैं आपको उबैदुल्ला अलीम साहब का, क्योंकि ख्याल वही है जमीन अलग है, उबैदुल्ला अलीम साहब का एक शेर सुनाना चाहूंगा जो कहते हैं कि मैं तन्हा था मैं तन्हा हूं तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या। क्योंकि यार इंसान का जो लोनलीनेस होती है ना, इंसान का जो अकेले रहने का, आइसोलेट करने का जो एक जो फितरत होती है उसकी, वो उसके अंदर से होती है। वो एक झुंड में भी होगा, वो किसी पार्टी में भी होगा, लेकिन अगर वो दिमाग से अकेला है, अगर वो दिमाग से आइसोलेटेड है ना, तो वो आइसोलेटेड ही रहेगा। मैं तन्हा था मैं तन्हा हूं तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या। देखिए आने जाने के वादे तो हम नहीं करते, लेकिन एक से बढ़कर एक गजलें नगमे नज़मे लाइन से लगा रखी है आपके लिए। स्टेडियम मिर्ची महफिल, आपकी ताशी है आपके साथ। आदाब, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो
2: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो,
2: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: हैं, मोबाइल पे
1: और क्या?
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले तो नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद।
1: डिस्टर्बेंस आ रही है।
3: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो, सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: घर दे कम ना रुकन गे, ओ जिम विच फटे चकांगे।
7: You better watch her shine।
6: टारगेट पूरे करन गे, हुन बदले रूल जमाने दे।
7: You better watch her shine।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: बड़े पेचीदा किरदार होते हैं ये शायर।
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: मिर्ची महफिल में आपका दाशी आपके साथ। और हाँ जी, वक्त है अब कि हम रूबरू कराएं आपको हमारे आज के शायर से, जिनका नाम है नज्म तबा तबाई। एग्जैक्टली राइट, इनका असल नाम जो है सैयद अली हैदर था। लखनऊ में इनका जन्म हुआ था 1852 में करीब। और उर्दू के अलावा अरबी और फारसी की भी गहरी महारत थी इन्हें। अंग्रेजी भी जानते थे। पहले कलकत्ता में वाजिद अली शाह के शहजादों को पढ़ाने का काम किया और फिर हैदराबाद पहुंचे जहां निजाम कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर हुए। अब इनका एक बड़ा पसंद शेर है मेरा, कहते हैं कि बिछड़ के तुझसे मुझे है उम्मीद मिलने की, बिछड़ के तुझसे मुझे है उम्मीद मिलने की, सुना है रूह को आना है फिर बदन की तरफ। आए हाय हाय, जो इमेजरी है ना कि मतलब रूह चली गई है और लौट रही है बदन की तरफ, वो बड़ी खूबसूरत हिस्सा लगता है मुझे इस शेर का। और वो डिस्टेंस भी बताता है और ये भी बताता है कि कभी वो पॉसिबल नहीं होगा कि एक जुदा जो हो चुकी हो रूह वो बदन से फिर से मिल जाए, ये पॉसिबल कहाँ है। लेकिन बिछड़ के तुझसे मुझे उम्मीद है मिलने की, सुना है रूह को आना है फिर बदन की तरफ। जिंदाबाद। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
1: मिर्ची स्टोरीज,
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
0: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और कुछ लोग घर तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक उन्होंने जो कह दिया था उसे पूरा ना कर ले। हाँ, बहुत से लोगों की ये कहानी है कि वो घर पे कुछ बता के निकले थे और अब जब तक वो उस जगह तक पहुंच ना जाए तब तक उन्हें लगता है कि वो अपना चेहरा दिखाएंगे घर पे वापस तो बेमानी बात होगी। खुर्शीद रिजवी साहब का एक शेर याद आता है, कहते हैं कि पलट कर अश्क सूए चश्मे तर आता नहीं है। अश्क मतलब आंसू और सूए चश्मे तर मतलब जो गीली आंखें होती हैं। पलट कर अश्क सूए चश्मे तर आता नहीं है, ये वो भटका मुसाफिर है जो घर आता नहीं है। आय हाय हाय हाय, कितनी गहरी बात कहती है। एक तो इसका मानी आप ये भी खोज सकते हैं कि यार अगर किसी के आंसू तुमने बहवा दिए है ना, तो उसके बाद वो इंसान भूलेगा नहीं, फिर चाहे जो कर लो। जो कहते हैं ना कि कांच एक बार टूट गया तो टूट गया, फिर अब जितना सॉरी बोल लो कुछ नहीं होना। पलट कर अश्क सूए चश्मे तर आता नहीं है, ये वो भटका मुसाफिर है जो घर आता नहीं है। इसलिए किसी को भी हर्ट करने से पहले 100 बार सोचना, किसी से भी कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
1: बॉलीवुड पोर्टल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड पोर्टल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: ओ वेल वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: घर दे कम ना रुकणगे, ओ जिम विच फट्टे चक्कांगे,
6: यू बेटर वॉच हर शाइन।
5: टारगेट पूरे करणगे, हुण बदले रूल जमाने दे,
6: यू बेटर वॉच हर शाइन।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.

वाह जी वाह, इसका एक और शेर बड़ा पसंदीदा है मेरा, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मम्मी।
1: सिंगर मुकेश जी की आवाज में कितनी इनोसेंस है ना, मुझे कई बार उनकी आवाज ऐसे बेबी वॉइस लगती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मुकेश जी 10 भाई बहनों में छठे नंबर पर थे और उनकी बड़ी सिस्टर उसको म्यूजिक सिखाने के लिए एक टीचर आते थे और ये छोटे से साथ वाले कमरे में चुप चुप के ये म्यूजिक सेशंस जो है, म्यूजिक क्लासेस जो है वो देखा सुना करते थे। और तब ये म्यूजिक टीचर ने इनको नोटिस किया और इनको भी अपना शागिर्द बना लिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख खराय से।
4: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
4: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
4: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
4: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसमें था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
4: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
4: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
4: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
4: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊँ?
4: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था, उसे पूछे भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
4: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
4: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
4: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ ले
4: जी। मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: पुरानी जीन्स विद जान ओनली ऑन

अमर अकबर एंथोनी का ये गाना ऋषि कपूर साहब पे पिक्चराइज है, राइट? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन इसकी एक लाइन अमिताभ बच्चन साहब पे भी पिक्चराइज है। सो इन द मूवी ऋषि कपूर ये शो परफॉर्म कर रहे होते हैं और अमिताभ बच्चन उनका ये शो देखने आते हैं, और एक लाइन अकबर मेरा नाम नहीं है, अमिताभ बच्चन भी पिक्चराइज्ड है। तो इस लाइन को गाने के लिए ना किशोर कुमार को अप्रोच किया गया था, लेकिन वो एक लाइन गाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी प्राइस कोट की, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिर सोचा कि वो एक लाइन अब रफी साहब ही गा रहे हैं तो उन्हीं की गाई हुई पिक्चराइज कर लेते हैं, तो ये सीन हुआ था। फिलहाल सीन ऐसा है कि मुस्कान को ले जाएं आप कान तक और कान रखें मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। साथ ही रखना, छोड़ना नहीं, ठीक है।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा,
10: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

से कैसे हैं आप? अ से अच्छे हैं? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अब इसे आप सुपरस्टिशन बोल सकते हैं, लकी चार्म बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश अपनी फिल्मों के नाम अ से रखते थे। फिल्म्स लाइक आपकी कसम, आक्रमण, आशिक हूँ बहारों का, आखिर क्यों, अपनापन, आशा, अर्पण, आदमी खिलौना है, आन मिलो सजना, ये जे ओम प्रकाश साहब राकेश रोशन साहब के ससुर जी थे, ऋतिक रोशन के नाना। और इन्होंने ना एक ही फिल्म बनाई जिसका नाम अ से नहीं शुरू होता था। वो फिल्म भी चल गई थी, ऐसा नहीं कि फ्लॉप हो गई। ये फिल्म थी राजा रानी और इसका ये गाना मुझे आए हाय इतना पसंद है भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हू देयर,
5: हुम आर यू,
6: हुम आर यू, हू,
7: अरे हुम आर यू लुकिंग फॉर मैडम?
6: खट खट, हू देयर,
8: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1,
9: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: जीनत अमान की कितनी सारी सुपरहिट फिल्में रही हैं, लेकिन उनकी फेवरेट पता है कौन सी रही है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रही है 1980 की फिल्म इंसाफ का तराजू। सुनिए इस बारे में उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: बहुत वुमन ओरिएंटेड फिल्म था, एक रिवेंज फिल्म था, एक मोटिवेटेड फिल्म था। आई वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। मेरी पार्टिसिपेशन उस हद तक रही कि चोपड़ा जी ने मुझसे हम लोगों को इन्वॉल्व कर दिया था और हम लोगों ने अपना दिल से इनपुट दिया उनको और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और इनकॉर्पोरेट भी किया। कि मेरी ज़रा सेल्फिश रीज़न भी थी बिकॉज आई वाज गेटिंग अ परसेंटेज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फिल्म फर्स्ट टाइम एज एन एक्टर।
0: ये बात थी। वैसे उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म कुर्बानी के पीछे फिरोज खान साहब की धर्मात्मा फिल्म से जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिए।
1: उसमें उन्होंने मुझे एक सेकेंडरी रोल ऑफर किया था जिसे मैंने मना कर दिया तो मुझसे नाराज हो गए और कुछ फोन पे कुछ उलट सुलट कह दिया जिससे मैं उनसे नाराज हो गई, तो फिर हमारी बातचीत ही नहीं हुई। फिर जब वो कुर्बानी बना रहे थे उन्होंने फोन किया और बोला अब ये सेकेंडरी रोल नहीं है जीनत अमान।
0: तो इस तरह ये कुर्बानी में आ गई और छा गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।

लता मंगेशकर एंड आशा भोसले सिंगिंग टुगेदर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। दोनों बहनों में बहुत प्यार था लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि उतनी राइवलरी और कंपटीशन भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जो गाने लता जी के लिए और किसी वजह से वो नहीं गा पाती थी तो वो आशा भोसले जी को मिल जाते थे, लेकिन जो गाने आशा जी को जहन में रख के कंपोज किए जाते थे, यू नो कैबरे सॉन्ग्स या थोड़े से ज्यादा सेंशुअल सॉन्ग्स, वो फिर लता जी को ऑफर नहीं किए जाते थे बिकॉज वो उस तरह के गाने नहीं गाती थी ज्यादा। बट वट एवर, वी स्टिल हैव सॉन्ग्स जहाँ पे इन दोनों मेलेडी क्वींस ने साथ में गाना गाया है, और ऐसा ही गाना है पड़ोसन फिल्म का, ये वाला जो हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकते, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ला रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ पर रहो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: घर दे कम ना रुकन गे, ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
6: You better watch her shine।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

म्यूजिक कंपोजर जोड़ी राम लक्ष्मण। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने ज्यादा राजश्रीज की फिल्म्स के लिए म्यूजिक दिया है और इसमें जो राम थे उनका असली नाम सुरेंद्र था, वो भी एक म्यूजिशियन थे, और लक्ष्मण के नाम से विजय पाटिल म्यूजिक कंपोज करते थे। और आपको पता है इन्होंने मिड 70s में ही या अर्ली 70s में म्यूजिक कंपोज करना शुरू किया होगा साथ में, और 1976 में सुरेंद्र पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी विजय जो है वो राम लक्ष्मण नाम से ही म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। उन्हीं का कंपोज किया हुआ ये गाना सुनते हैं यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

आओ सुनाए तुम्हें अंडे का फंडा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं भाई, वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपको कुछ शेर और शायरी सुना सकती हूँ, वो भी किसी और की लिखी हुई। निदा फाजली मेरे पसंदीदा शायरों में से एक, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये लिखते थे और दिल के आर पार हो जाता था इनका लिखा। ये लिखते हैं, ये कैसी कश्मकश है जिंदगी में, किसी को ढूंढते हैं हम किसी में, निकल आते हैं आंसू हंसते हंसते, ये किस गम की कसक है हर खुशी में, चमकती है अंधेरों में खामोशी, सितारे टूटते हैं रात ही में। और ये आगे की दो लाइंस मेरी फेवरेट हैं, बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिब्लिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
0: 89.6, 89.6. It's hot. Purani jeans, charu ke saath, sirf Mirchi par.

0: म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना जी मात्र 18 साल की थी जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1959 की दिल देके देखो, और ये फिल्म जब वो थिएटर में देखने गई थी तब का किस्सा उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था, सुनिए।
1: जब पिक्चर लगी दिल देके देखो तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा जाके थिएटर में देखती हूँ लोग क्या बोल रहे। पहले बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि मैंने मुझे दिया। काफी लोग सोचे कि किसी आदमी ने दिया किसी और मेरा नाम दिया है। तो मुझे बड़ा शौक, में जाके देखती थी तो दो तीन लड़के मुझे पहचान गए, क्योंकि पब्लिसिटी उन्होंने बहुत अच्छी की थी। मतलब उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर की फोटो छापना बड़ी बात हो जाती थी। तो दो तीन लड़के खड़े थे, वो मैं एक कोने में बैठी देख रही थी। जिन्हें वो एक लड़का बताया, अरे तुमने सुना था बकवास म्यूजिक दिया इस पिक्चर का। बोले क्यों, नहीं एक भी गाना अच्छा नहीं। दूसरा बता रहे यार हम सोचे थे पता नहीं क्या हुआ, अच्छी लड़की है जो म्यूजिक दे रही, मुझे तो नहीं लगता। सब बोलते रहे, मैं चुपचाप रही। इसके बाद मैं धीरे से उनके पास आके बोली, भैया मेरे गाने अच्छे नहीं लगे तो मैं तो कोई बात नहीं, मैं अगली पिक्चर में अच्छा म्यूजिक दे रही। पर एक्सपेक्ट फिर वो बेचारे मुझसे माफी मांग ले, बोले नहीं हम तो आपको ऐसे ये मजे आते थे। हम लोग जाते थे थिएटर में, कहाँ बैनर्स लगे हुए हैं उसमें मेरा नाम कितना बड़ा लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है।
0: How adorable and how awesome is this song composed by Usha Khanna ji. हाँ थोड़ा सा उदास गाना है, लेकिन उदासी में भी अलग ही खूबसूरती होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट

वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स एवर इज लावारिस का अपनी तो जैसे तैसे। पता नहीं कितने सारे रीमिक्सेस बने इस गाने के। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन हम इसके वीडियो की बात करेंगे। इसमें जो डांसर है ना, अक्सर ये गलत फहमी हो जाती है कि उन फीमेल डांसर का नाम नेली है। नेली वो एक्ट्रेस थी इस फिल्म में, एक्स्ट्रा एक्ट्रेस थी, जिनकी वजह से ऐसा सुनने में आता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में थोड़ी सी लड़ाई ब्रेकअप टाइप का हो गया था, बिकॉज अमिताभ बच्चन साहब थोड़ा ज्यादा ध्यान उन पे दे रहे थे। लेकिन ये गलत फहमी है, मतलब ये गलत फहमी है कि इस गाने के वीडियो में जो डांसर हैं वो नेली हैं, वो नेली नहीं है। उन डांसर का नाम है अलका नूपुर, जिन्होंने काफी फिल्मों में एज डांसर परफॉर्म किया है। चलिए अभी तो यहाँ पे ये गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
3: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
0: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मीसम नाम है।
0: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
3: 1200 रुपए।
0: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
3: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
0: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
3: जी
0: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
3: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
0: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
3: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
0: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
0: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछने ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
3: सर
5: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
3: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

म्यूजिक कंपोजर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के बीच में कुछ गिनी चुनी ऐसे डिसएग्रीमेंट्स लड़ाइयां हुई होंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, डिसएग्रीमेंट तो बहुत हुए होंगे, लेकिन ऐसे ढेंटडन टाइप की जो लड़ाई होती है वो गिनी चुनी थी। ऐसी एक उनकी कोई झड़प हुई थी जब ये कोई अब्रॉड म्यूजिक टूर पे गए थे, जहाँ पे प्यारे लाल जी जो हैं उन्होंने इम्पल्सिवली ऐसा डिसाइड कर लिया कि अब वो लक्ष्मीकांत के साथ काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट 2 हफ्ते तक लक्ष्मीकांत जी अकेले ही उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे जो इन दोनों को मिला था। लेकिन ये लड़ाई बस फिर 2 हफ्ते की ही थी। इस बीच में इतने सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग पीपल लाइक लता मंगेशकर, मनोज कुमार, जी ओम प्रकाश और इनकी फैमिली के लोग भी, इन्होंने इनको इतना कन्विंस किया, इतना बोला कि भाई पैचअप कर लो, पैचअप कर लो, पैचअप कर लो, तो इनका पैचअप हो गया। अच्छा हुआ हो गया, नहीं तो इतना अमेजिंग म्यूजिक हमको कैसे मिलता। चलिए इन्हीं का कंपोज किया हुआ गाना सुनेंगे पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 89.6 मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स With Charu, only on Mirchi. Purani
9: ye mana meri jaan, mohabbat saza hai. Ye mana meri jaan, mohabbat.

0: मैं अभी तक ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि कयामत से कयामत तक फिल्म का नाम पहले नफरत के वारिस होने वाला था।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, इसका पहले नाम नफरत के वारिस होने वाला था। अगर इस नाम से फिल्म रिलीज होती तो क्या उतनी ही हिट होती? आई गेस सो। लेकिन तब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में से QSQT नहीं बुलाते, तब हम इसे NKW बुलाते। डजंट साउंड कूल एट ऑल, नफरत के वारिस। QSQT इज क्यूट एंड कूल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
3: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

0: रेखा एक बेहतरीन डांसर हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन जब एक बहुत पुराने और पॉपुलर इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये डांस कहाँ से सीखा है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा। मेरे हमारे यहाँ हमारे फैमिली में यही है कि बचपन से सभी डांस करते हैं, माई मदर, माई सिस्टर्स। और प्रोफेशनली अगर आप देखा जाए तो हाँ, ज़बरदस्ती हम लोगों को डांसिंग स्कूल मम्मी ने भेजा था ज़रूर, बट मैंने कभी ठीक से ध्यान से सीखा नहीं। अब मुझे लगता है कि आई विश मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेती तो। डांस मुझे ये लगता है कि इट्स योर फीलिंग, अंदर से जो आप फील करते हैं उसको आप, इफ़ यू फील इट विथ योर सोल यू नो, तो वो यू नो अंग अंग में आ जाता है। इट्स योर ग्रेस व्हाट यू हैव, एंड आई थिंक हमारे फैमिली में सभी ग्रेसफुल है।
0: वेल, ग्रेस, एलिगेंस, नजाकत, अदाएं, ये तो ऐसा लगता है कुछ ट्रिक्स हैं। और रेखा एक जादूगरनी, ये बंदी ना इश्क है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: है मेरी हमराह, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.